ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सवेरे के 6 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे।

0: मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संकट करते दूर सभी के पवन पुत्र हनुमान, रोग न सहे जीवन सुखमय हो ऐसे कृपा निधान। सुमिरन कर मन पवन पुत्र का, मुदित होए श्री राम, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जय जय जय हनुमान।

मन में जो सुख भर दे उस सुख का नाम है राम। मंत्रों में एक महामंत्र है, नाम है जिसका राम। राम नाम की महिमा अनंत और अपरंपार है। राम नाम सोए जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान।

आपके नाम की महिमा अपरंपार है प्रभु। मात्र आपके नाम के सुमिरन से ही मन सुख से भर जाता है। ये सब आपकी परम कृपा है प्रभु। आपकी इस कृपा के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपको कोटि कोटि नमन।

0: जपले रे मन नाम प्रभु का, प्रभु नाम सुखदाता है, प्रभु नाम में रमने वाला भवसागर तर जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण और साथियों के स्वर में भजन सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:25 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार।
1: कानून शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए कानून के खिलाफ विद्रोह करना या सरकारी आदेशों की अवहेलना करना स्वाभाविक रूप से गैर कानूनी समझा जाता है। जो भी देशभक्त आवश्यक सुधार लाने का सोचता है, उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो महसूस करता है कि कानून की अवज्ञा करना उचित नहीं है और इस प्रकार वो विकट स्थिति में उलझ जाता है। गांधी जी भी जब ऐसी ही विकट स्थिति में फंसे थे, तभी उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इस प्रकार निष्क्रिय विरोध, बाधा या सत्याग्रह के आविष्कार का श्रेय उन्हीं को है और उन्होंने ही इसे अपनी तपस्या से निखार दिया। यह कहना कठिन है कि न्यायोचित होने पर भी सत्याग्रह हर मौके पर किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो हर जगह यह कारगर हो सकता है या नहीं। लेकिन यह बात सबको माननी पड़ेगी कि इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं निहित हैं। सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा इतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए कि सत्याग्रही के मस्तिष्क में केवल कर्तव्य पालन की ही भावना विद्यमान रहे। सब कुछ के बावजूद कर्तव्य करने की भावना से ही उसे अभिभूत रहना चाहिए। इसी को नैतिक बल, सत्यवादिता और चरित्र कहते हैं। यह नैतिक गुण पढ़ने लिखने या विद्वता प्राप्त करने से ही नहीं आ जाता। यह तो एक आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे चरित्र निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनियां अत्यंत उपयोगी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझसे मेरे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि विशुद्ध धार्मिक और दार्शनिक जीवन का मेल रोजमर्रा के जीवन से नहीं बैठता। यदि मोक्ष, जो कि मानव का उच्चतम लक्ष्य है, प्राप्त करना है

0: तो लौकिक इच्छाओं और इस संसार का परित्याग करना होगा। एक ही समय में दो स्वामियों ईश्वर और संसार की सेवा नहीं की जा सकती। मैं इसका अर्थ ये समझता था कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे शीघ्र इस संसार का त्याग कर देना चाहिए। इससे मैं सोचने को मजबूर हो गया। मैंने अपने से ही यह प्रश्न पूछा, क्या मेरा धर्म मुझसे यह कहता है कि पूर्ण मानवत्व को पहुंचने के लिए मुझे इस संसार का त्याग करना होगा? यदि मनुष्य ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से संसार के हितों से भी तादात्म्य स्थापित करना पड़ेगा और उसके लिए कर्म भी करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पूर्ण तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि तीन तत्वों में से केवल दो ही तत्वों के बीच तादात्म्य स्थापित होता है और वे हैं जीव और ब्रह्म। तीसरा तत्व माया अर्थात संसार बाहर छूट जाता है। इस प्रकार मैंने इस प्रश्न का अपने लिए हल ढूंढ निकाला है। मेरा मत है कि संसार की सेवा करना ईश्वर की इच्छा का पालन करना है और यही मोक्ष का निश्चित मार्ग है, तथा केवल संसार में ही रहकर इस पर चला जा सकता है, संसार को छोड़कर नहीं। जैसी कि विधाता की इच्छा है, संसार को क्रमशः सत्पथ की ओर प्रवृत्त करने के लिए कर्म करना ही होगा, लेकिन यह कर्म कर्तव्य बंधन का कारण न बने इस उद्देश्य से फल प्राप्ति की आशा किए बिना ही निष्काम भाव से इसे करना चाहिए।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। रात 9:30 कार्यक्रम होगा रेडियो पत्रिका साहित्य भारती। इसमें आज हम प्रसारित करेंगे रूपक आजादी का काव्य पथ। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:45 हम आपको सुनवाएंगे श्री देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता। विषय रहेगा ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर गौरव मित्तल। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनते हैं 7:31 पर। 11:00 कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे 11:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा स्वदेशी से राष्ट्र समृद्धि। दूसरा विषय रहेगा शिशु के लिए अमृत है मां का दूध। आज शनिवार है, दिन में 1:15 पर हमारी ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी पनघट। इसमें आज चर्चा की जाएगी बरसात के मौसम में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर। वार्ता प्रसारित की जाएगी स्वस्थ जीवन का आधार

संतुलित आहार क्रम रहेगा। आपकी रसोई, दादी का बटुआ और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा अमृत भारत स्टेशन योजना। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में श्री अनिंद्र सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी वर्तमान संदर्भों में लोकमान्य तिलक की प्रासंगिकता। इसके अलावा क्रम रहेगा आइए जाने इस सप्ताह और आज के हमसफर। ग्रामीण कार्यक्रम में 6:00 बजे चर्चा का विषय रहेगा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। सुश्री दीप्ति शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी आत्मनिर्भर एक सशक्तता की प्रतीक।

सुश्री दीप्ति शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, आत्मनिर्भर एक सशक्तता की प्रतीक। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई खोजें, मंडी भाव की जानकारी दी जाएगी, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा, विषय रहेगा असहयोग आंदोलन दिवस। श्रीमती नीरज कुशवाहा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, दहेज नहीं गुण देखिए। क्रम रहेगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, कुछ सेहत के लिए टिप्स दिए जाएंगे और फिल्मी गाने भी प्रसारित किए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे श्री पंकज गुप्ता की वार्ता, विषय रहेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, व्यक्तित्व और कृतित्व। आपको एक बार फिर याद दिला दें, ग्राम्यालोक कार्यक्रम में शाम 6:00 अशोक कुमार सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय रहेगा महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्तता की प्रतीक दीप्ति शर्मा। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश शाम 7:31 पर। सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में 8:45 पर और सुरसरिता कार्यक्रम में 10:00। पुराने फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:25 पर कार्यक्रम गीत मंजूषा में। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता। विषय है ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार।
1: हम अपने ग्रामों को देखें, हमें अपने ग्रामों के चारों तरफ तालाबों के स्थान दिखाई देंगे, जो ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज वर्षा के जल के संग्रहण के लिए कितने सचेत थे। यही कारण है कि ग्राम की हर दिशा में तालाब मिलेंगे, जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता था और भूमिगत जल स्तर अस्थायी रहता था। इन तालाबों के चारों तरफ कुएं बने होते थे, जिसमें वर्षा का पानी वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता था। यही नहीं, इन तालाबों से फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई भी की जाती थी और इन तालाबों की प्रतिवर्ष सफाई मकान की मरम्मत के लिए मिट्टी लेने के होती रहती थी। आज वर्तमान में गांव-गांव मकान पक्के बन गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि तालाबों की सफाई बंद हो गई और तालाब धीरे धीरे भर गए। इनमें जो पानी रुकता था वह सिंधी नदियों में जाने लगा, भूमिगत जलस्तर गिरता गया, कुएं समाप्त हो गए। सरकार ने हैंडपंप लगवाए हैं, उनकी भी यही स्थिति है कि भूमिगत जलस्तर गिरने से प्रतिवर्ष उनको रीबोर करना पड़ता है। हैंड पंप जो 40 फीट पर लगते थे, उनकी गहराई 120 से 130 फीट तक हो गई है और जल स्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष सूखी और कम वर्षा के कारण स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। जनपद आगरा के दक्षिणी जनपद आगरा प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने के बीच स्थित है। जनपद की जलवायु राजस्थान के मरुस्थल एवं कर्क रेखा के समीप होने के कारण शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक का शीतकाल में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 651 मिलीमीटर है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4.62 लाख हेक्टेयर है, जो 940 ग्रामों में बटा हुआ है। जनपद में भूमि जल के कारण भूमि क्षरण ऊसरता जलमग्न

क्षेत्र 2.24 लाख हेक्टेयर है। जनपद की बिहार क्षेत्र जो भूमि की क्षरण क्षमता से ग्रसित है वह 1.4 लाख हेक्टेयर है। यह क्षेत्र यमुना उटंगन व चंबल नदियों के जल समेत क्षेत्र में फैला हुआ है और जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का 34.62% है। बताए गए कारणों से 24.62% क्षेत्र का संपूर्ण जल बिना किसी रुकावट से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लिए हुए नदियों की ओर प्रतिवर्ष चला जाता है, जिससे भूमि की उत्पादकता के साथ साथ भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है और प्रत्येक वर्ष भूमिगत जल स्तर 4 से 6 फीट तक चला जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के बरौली अहीर, खंडौली, बीजपुरी, फतेहपुर सीकरी, अकोला, अतमादपुर, अछिनवा विकासखंड, सैलाइन, टेली और खारे पानी एवं फ्लोराइड जल की समस्या से ग्रसित हैं और यह पानी पीने के साथ साथ खेती के लिए भी योग्य है। इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि भूमि जल स्तर में वृद्धि की जाए। यह समस्या मुगल काल से लेकर आज तक यथार्थ बनी हुई है, जिस पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है। 940 गांवों में से 904 गांव में ही इस समय आबादी है। 36 गांवों से मानव जनसंख्या का पलायन भी हो चुका है। भूमिगत जल स्तर के निरंतर गिरते रहने के कारण जनपद में के 15 में से 9 विकास खंड डार्क श्रेणी में तथा 6 विकास खंड ग्रे श्रेणी में घोषित हैं। 43.2% बिहार क्षेत्र का जल तो सीधे नदी में चला ही जाता है, वह अपने साथ साथ ऊपर की भूमि के 7% क्षेत्र के जल को भी साथ ले जाता है। यह आकलन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा के कारण 16.55 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष भूमि कट जाती है, जिससे 61% मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है तथा 29% नदी की तलहटी में जमा हो जाती है और 10% बड़े बड़े तालाबों या समुद्र में एकत्रित होती है। इस प्रकार का भूमि क्षरण अत्यंत ही विनाशकारी है। यह किसी भी दशा में 4.5 से 6 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि यह क्षरण शून्य हो। बिहार क्षेत्र 43.2% है और यह प्रतिशत प्रदेश में के 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 14% है। जनपद की अधिकतम वर्षा 15 जुलाई से 15 सितंबर के मध्य होती है। भूमि का ढालू एवं उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा का अधिकतर जल वानस्पतिक या अभियंत्रित अवरोधों के न होने के कारण सीधे नदी में चला जाता है। परिणाम भूमिगत जल स्तर में निरंतर कमी। इन्फिल्ट्रेशन कम होने के कारण भूमि के ऊपरी सतह में नमी का अभाव, नमी के अभाव से वनस्पति का न उगना और इस उग भी जाए तो उसका नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। जनपद के 1985 से लेकर 1994 के बीच 14 विकास खंडों में भूगर्भ जल स्तर मानसून से पूर्व 2.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक गिर चुका है। मानसून के पश्चात भी भूगर्भ जल स्तर में 2 से लेकर 8 मीटर तक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्षा के जल को संचित कर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण के कार्य कराए जाने पर बल दिया जा रहा है। यह योजनाएं मैक्रो मड योजना, जल निधि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय जलागम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, भूमि जल संरक्षण की योजनाएं एवं स्वजाधारा योजना है। इन सभी योजनाओं में आप सभी किसान भाइयों की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता निर्धारित है, जिसमें जल निधि योजना में किसी

0: ही पुराने जल स्रोत के सुधार के लिए आपका अंशदान कुल लागत का न्यूनतम 10% निर्धारित है। मैक्रो मड योजना जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत भी आपका सहयोग तालाबों के जीर्णोद्धार में आमंत्रित है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी प्राकृतिक संसाधन पानी को संरक्षित कर सूखे एवं पानी की समस्या से छुटकारा पाए। यदि हम जल का संचय करें, मिट्टी अपने आप संचित हो जाएगी। इन दोनों के संचय पर वनस्पति स्वतः पैदा होगी और यह तीनों मिलकर पर्यावरण को सुधारेंगे, जिसका सीधा प्रभाव प्राणी जगत वनस्पति जीवन पर पड़ेगा।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता, विषय था ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति। आंध्र प्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं षट्शताधिक पंचसहस्र कोटि रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रीय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं षष्ठि लक्ष यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री अशीत्यधिक अष्टशताधिकैक सहस्र कोटि रूप्यकाधिक व्ययुताः राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आंध्र प्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमंत्री कर्नाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचार पटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधान्याः जंतर-मंतर स्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत्, यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगत मात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देश विदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक

0: रोबोटिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31-2000 वर्ष पर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की

0: स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Margo. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward the misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in the national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct was understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: Prime Minister Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram. He will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Vishakhapatnam. After concluding his visit to Andhra Pradesh, the Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Viveka Smarka. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his 2-day official visit to Bhutan yesterday. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation Talks

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। स्वास्थ्य चर्चा इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर गौरव मित्तल की लघु वार्ता। विषय है तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हमारी जानकारी का विषय है तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गौरव मित्तल को। तो डॉक्टर मित्तल, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि तंबाकू के खाने से कौन कौन सी मुंह की प्रमुख बीमारियां होने की संभावना हो सकती है।
2: देखिए, तंबाकू जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में निकोटीन बोलते हैं, ये खाने से मुख में कई तरह के रोग बनते हैं, जिसमें कि कैंसर एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा मुंह में सड़न होना, मुंह में बदबू आना और भी तमाम रोग हैं जिसके कारण कि इंसान को परेशानी हो सकती है। ना सिर्फ तंबाकू का सेवन नुकसानदायक है, और इसके अलावा जो मुंह के जितने भी रोग हैं वो मुख्यतः आपके तंबाकू के सेवन से ही बनते हैं। इसमें से प्रमुख आपका ल्यूकोप्लाकिया है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट के जरिए या पाउचों, आजकल जो पाउच आ रहे हैं उनके जरिए तंबाकू का सेवन करते हैं तो एक सफ़ेद झिल्ली बन जाती है उनके मुंह में
1: जी,
2: उसको ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं, जो कि कैंसर का ही एक रूप है। अगर समय से इसका इलाज ना हो, इसका समय से इसको दिखाया ना जाए, तो ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है, कोई पेशेंट के लिए ये दिक्कत कर सकता है।
1: निश्चित रूप से आजकल देखने में आता है, बल्कि एक आम प्रचलन हो गया है कि लोगों ने पाउच लिया, खोला और पूरा का पूरा पाउच एक बार में मुंह के अंदर,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको ये एहसास करता ही नहीं होता कि ये पाउच का जो पदार्थ है वो हमारे मुंह के अंदर जाकर कितनी परेशानी पैदा कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बहुत चिंता की बात है, और आजकल तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, विशेष रूप से मुंह की बीमारियां।
2: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, दांतों के संदर्भ में अगर हम देखें या मसलों के संदर्भ में अगर हम देखें, तंबाकू की बात करें, तो दांतों के ऊपर या मसलों के ऊपर तंबाकू का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
2: जी देखिए, दुष्प्रभाव सबसे प्रमुख तो दुष्प्रभाव ये है कि दांतों के ऊपर तंबाकू निशान छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो सौंदर्य है उसमें गिरावट आती है। दांतों के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, वो स्केलिंग की प्रक्रिया से भी सही होने में, अगर आप तंबाकू लंबे समय तक, लंबे अवधि तक अगर आप खा रहे हैं तो तंबाकू के निशान साफ भी नहीं होते हैं। इसके अलावा तंबाकू मसूड़ों में भी गंदगी पैदा करने वाले कीटाणु, सड़न, इन सब को जन्म देता है, और तंबाकू का सेवन कैंसर को जन्म दे सकता है, जो कि आगे चल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और
1: बहुत ही एक जटिल उपचार है,
2: जटिल उपचार है इसका।
1: तो डॉक्टर मित्तल, अक्सर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का मुंह, उनका जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता है, ये शिकायत अक्सर देखने में आती है
2: जी,
1: तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये किस दुष्प्रभाव की वजह से हो सकता है?
2: देखिए, तंबाकू में जिसको हम निकोटीन बोलते हैं, ये एक कैंसर का कारक है, कैंसर कॉज करने वाला है। जब भी हम तंबाकू खाते हैं तो सब ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि तंबाकू खाने से धीरे धीरे आदमी का जो मुख होता है
1: जी,
2: वो कड़ा होता जाता है, उसके अंदर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, वो कड़ी होती जाती है। इसके तहत मुंह का खुलना असंभव हो जाता है
1: जी,
2: या मुंह खुलता है तो बहुत कम खुलता है। इसमें खाना खाने में ठंडा गर्म लगना, खाना खाने में

0: परेशानी, तो इसका उपाय बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उपाय से ज्यादा जरूरी है कि आजकल की जो जो युवा पीढ़ी है
1: जी
0: वो तंबाकू के सेवन से बचे, ताकि उपाय करने से पहले उस रोकथाम हो सके।
1: निश्चित रूप से, अगर आप मुंह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमारी बात मानिए, हमारे डॉक्टर साहब की बात मानिए, हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत हम जो जानकारियां दे रहे हैं उस पर अमल कीजिए और तंबाकू का सेवन मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो डॉक्टर मित्तल, आपने हमारे श्रोताओं को तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लघु भेंट वार्ता, तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर गौरव मित्तल से भेंट कर रहे थे नीरज जैन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 होने को हैं। देशभक्ति परक गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।

0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
4: ये जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
2: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर

0: शिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
1: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, MSME इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
3: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
0: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्शन व्यवस्था लागू की गई है जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031

0: 30 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कई श्रोताओं कैसे हैं आप? ठीक है। और अब तो आपने चाय वगैरह भी पी ली होगी, घर से बाहर जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो सुबह ही सुबह करने होते हैं तो उनकी तैयारी में भी आप लगे होंगे। और स्कूल खुले हुए हैं आजकल तो बच्चों को भी स्कूल जाना होगा, उनकी भी तैयारी कर रही होगी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो माँ की होती है, क्योंकि माँ को एक टिफ़िन तैयार भी करना होता है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और बच्चों की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो माँ के ऊपर ही होती है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों के लिए। यूं भी कहते हैं कि इस संसार में जो शाश्वत अगर कोई रिश्ता है तो वो माँ और बच्चे का ही है। एक माँ ही है जो जन्म देने के बाद बच्चे को पोषण देती है, उसका पालन पोषण करती है। हालांकि पिता की भी जिम्मेदारियां कम नहीं हैं, बिना पिता के भी पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बात नवजात शिशु की आती है तो वहाँ माँ की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक माँ ही वो स्रोत है जो बच्चे को पोषण देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दुग्ध की, उस दूध की जो माँ अपने बच्चे को पिलाती है। विज्ञान भले ही स्तनपान को शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण मानता हो, पर आधुनिक समाज की कुछ महिलाएं इससे इत्तफाक नहीं रखती हैं। वे अपने बच्चे को या तो स्तनपान कराने से बचती हैं या फिर अपेक्षाकृत कम स्तनपान कराती हैं। ऐसा सिर्फ वे अपनी इच्छा के कारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी वजह मानने लगती हैं। वास्तव में देखा जाए तो आज बहुत बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं या अन्य तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो घरों से उनको बाहर निकलना पड़ता है, उनके पास अपने बच्चों के लिए समय कम हो जाता है। फिर स्तनपान कराने के लिए

कई जगहों पर ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती हैं कि वो अपने बच्चे को आसानी से स्तनपान करा सकें। मातृत्व अवकाश की जहां तक बात है तो वो कितना है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे में भी स्तनपान कराने से थोड़ा सा व्यवधान होता है। कई बार तो महिलाओं को प्रसव के कुछ समय बाद ही काम पर लौटना पड़ता है, क्योंकि जॉब है, नौकरी है, तो जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में उन्हें फिर शिशु के आहार के लिए जो बाजार में फॉर्मूला दूध बिकते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सौंदर्य और अपने शरीर को लेकर भी चिंताएं करती हैं, और उनमें ये धारणा होती है कि अगर लंबे समय तक स्तनपान कराएंगे तो उनकी जो शारीरिक बनावट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम अच्छे नहीं लगेंगे। जबकि

चिंताएं करती हैं और उनमें ये धारणा होती है कि अगर लंबे समय तक स्तनपान कराएंगे तो उनकी जो शारीरिक बनावट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम अच्छे नहीं लगेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि कहीं से भी अगर हम वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये धारणा कहीं भी प्रमाणित नहीं होती, लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया, विज्ञापन और ग्लैमर जगत के प्रभाव से ऐसी सोच को बढ़ावा तो मिला ही है। और जो इससे प्रभावित हैं, जो महिलाएं प्रभावित हैं, वे स्तनपान कराने से बचती भी हैं। शरीर के प्रति इस तरह की सजगता उन्हें मातृत्व के इस बहुमूल्य तोहफे से दूर भी कर देती है। कुछ महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी स्तनपान से बचती हैं और ऐसी औरतों में प्रसव के बाद जो एक हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, असंतुलन होता है या दूध की कमी जैसी समस्याएं हो जाती हैं तो कुछ मामलों में डॉक्टर भी शिशु को वैकल्पिक आहार देने की सलाह दे देते हैं। हालांकि स्तनपान न कराने का एक बड़ा कारण आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति भी है। शिशु आहार बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों का बहुत प्रचार प्रसार करती हैं और उन्हें सुविधाजनक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कई परिवारों को लगता है कि ये जो बाजार में बिकने वाला फॉर्मूला दूध है वो आधुनिक है और वैज्ञानिक तौर पर शायद सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे घरों में महिलाएं स्तनपान कराने से बचने लगती हैं, जबकि विशेषज्ञों का भी ये साफ साफ कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। कई कारणों से महिलाएं स्तनपान कराने से बचती हैं, कुछ वजह जायज भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ कारणों का तो कोई औचित्य ही नहीं है। सच्चाई ये है कि यदि समाज, परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था और कार्यस्थल पर मिलकर एक अच्छा वातावरण तैयार किया जाए तो महिलाएं अपने शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए सोचेंगी। प्रसव के तुरंत बाद नवजात को सर्वप्रथम जो चीज चाहिए तो वो है मां का दूध। ये शिशु के जीवन का आधार होता है, इसीलिए जन्म से 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराने की डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। देखा जाए तो स्तनपान केवल शिशु को पोषण देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मां और बच्चे के बीच एक गहरे भावनात्मक संबंध का आधार भी है। आजकल काफी प्रगति होने के बावजूद भी तमाम ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम है और सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि मां का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक रूप से तैयार है। इसमें पाई जाने वाली जो प्रतिरोधी क्षमता है वो शिशु को कई प्रकार के संक्रमणों और संक्रामक बीमारियों से बचाता है। आधुनिक जीवन शैली में जहां प्रदूषण और नई नई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, वहां स्तनपान बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का एक सबसे प्रभावी जरिया है। हालांकि स्तनपान का लाभ केवल बच्चे तक सीमित नहीं है, देखा जाए तो इससे मां के स्वास्थ्य को भी बहुत फायदा मिलता है। स्तनपान का आर्थिक लाभ भी है। बाजार में उपलब्ध शिशु आहार बहुत महंगे होते हैं और उनकी गुणवत्ता तो आप सभी जानते हैं। समय समय पर सवाल भी उठते रहते हैं उनकी गुणवत्ता पर, जबकि मां का दूध अनमोल है। ये पूरी तरह सुरक्षित होता है, इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी कमी आती है।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद सूचनाएं।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के साथ।
1: आज की के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। SIR में यदि आपका नाम कट गया है तो मतदाता बनने का मौका है। जी हां, यदि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है अथवा नाम, पते या उम्र में कोई गलती हो गई है तो आपके पास संशोधन का एक अवसर है। ऐसे में आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही तहसील सदर आगरा में निर्धारित फॉर्म भरकर भी जमा किया जा सकता है। जांच के बाद आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। आवेदन करने के लिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर या फिर मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप कर लॉगिन ID और पासवर्ड बना लीजिए। अगर मतदाता सूची से नाम कट गया है तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। ये फॉर्म भरते ही ऑप्शन खुलेगा। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, इसके बाद राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपने बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी। फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड की जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक रेफरेंस ID नंबर आएगा, इसे आप सुरक्षित रखें। यदि कोई परेशानी आती है तो आप 1950 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के आगमन के साथ ही राजपुर चुंगी क्षेत्र जगमगाने लगा है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर प्राचीन श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 अगस्त को लगने वाले मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए मंदिर परिसर में सजावट का कार्य भी शुरू हो गया है। क्षेत्र में झूले लगने लगे हैं और दुकानदारों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रावण मास के चारों सोमवार पर शहर के चारों कोनों पर स्थित प्राचीन शिवालयों पर भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित किए जाने वाले मेले से होती है। ये मेला शहर की प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल है। श्रावण के पहले सोमवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जल और दुग्धाभिषेक करने पहुंचते हैं। पूजा अर्चना के साथ मेले में बच्चों और युवाओं के मनोरंजन के लिए झूले, खानपान की दुकानें, खिलौने और घरेलू सामान की दुकानें भी सजी होती हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त को कांवड़ यात्रा, प्रमुख शिव मंदिरों पर जलाभिषेक और खासतौर पर राजेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले पारंपरिक मेले को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 आगरा मथुरा पर यातायात सामान्य रूप से चलेगा। फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहनों को रुनकता से दक्षिणी बाईपास होकर निकाला जाएगा। हाथरस से आगरा की ओर आने वाले भारी वाहनों को हाथरस पुलिस द्वारा सिकंदरा राव और सादाबाद से परिवर्तित मार्गों से

निकाला जाएगा। यह व्यवस्था 2 अगस्त की रात 11 बजे खुलने वाली नियमित नो एंट्री से आरंभ होगी और आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बिना किसी रुकावट के निकाला जाएगा। बरेली और बदायूं की ओर अगर आप जा रहे हैं तो मार्ग परिवर्तन की जानकारी अवश्य रखें। बदायूं में आज से और सोमवार तक जो मार्ग व्यवस्था रहेगी वो इस प्रकार है। भारी वाहनों को गंगा एक्सप्रेस वे समेत वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। कछला कांवड़ मार्ग सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। फरुखाबाद शाहजहानपुर बरेली मुरादाबाद संभल आगरा अलीगढ़ और कासगंज की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शहर और कछला मार्ग से हटाकर गंगा एक्सप्रेस वे बिसौली सहसवान गुन्नौर नरोरा और अन्य वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। फरुखाबाद और शाहजहानपुर से आगरा अलीगढ़ की ओर आने वाले ट्रक डीसीएम और अन्य भारी वाहन उसावा मयाऊ डहरपुर दातागंज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से वन कोटा टोल प्लाजा बिलसी मुजरिया सहसवान गुन्नौर और नरोरा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। बरेली से कासगंज आगरा और अलीगढ़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को गैनी आंवला बिसौली सहसवान और गुन्नौर के मार्ग से भेजा जाएगा। राजकीय अथवा निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण किए किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र 4 अगस्त तक पंजीकरण करा लें। प्रवेश के लिए काउंसलिंग के समय छात्र ऑनलाइन आवेदन का दस्तावेज भी जरूर लेकर जाएं। जनपद में करीब 2,500 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिल गई है और इसके लिए वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति भी दे दी गई है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को पहले की तरह हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। इससे खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को तराई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। इसके बाद 4 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को लखनऊ में सुबह दिन का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और रात का 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स संविदा एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को अगले सप्ताह से शासन द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी दरों पर वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नगर आयुक्त के अनुसार शासन की अधिसूचना के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने श्रम अनुभाग 2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम वाले जनपदों के लिए 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की गई हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम में कार्यरत किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शुक्रवार को लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियम के अंतर्गत अगर किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन 2 साल से ज्यादा देर से कराया जाता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्र और गलत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी।

और 1 साल से 2 साल तक की देरी वाले मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी। नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स संविदा एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को अब एक राहत भरी खबर है। इन सभी का न्यूनतम वेतन 423 रुपये प्रतिदिन के बदले अब 530 रुपये हो गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह और कंप्यूटर ऑपरेटर चालकों के लिए 7500 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। 81 दिनों का एरियर अलग से मिलेगा। सफाई कर्मियों को एरियर में 6237 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटर चालकों को 20000 रुपये मिलेंगे। बढ़ा हुआ वेतन और एरियर अगस्त में मिलेगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो या फिर बंद स्ट्रीट लाइट को चालू करवाना, नाली नालों की सफाई, वार्डों की समस्या की अब सीधी निगरानी होगी। इसके लिए 10 वार्डों पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। नगर निगम में 100 वार्ड हैं, इन्हें 4 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड से सबसे अधिक शिकायतें सफाई व्यवस्था, नाले नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों के गड्ढे और अतिक्रमण की आती है। अब नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक अधिकारी को 10-10 वार्डों का नोडल अधिकारी नामित किया है। अब संबंधित अधिकारी अपने आवंटित वार्डों का नियमित निरीक्षण करेंगे और पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित करके स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के 32,000 से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के मुताबिक 8, 9 और 10 जून 2026 को 6 पालियों में हुई परीक्षा के नियमावली के मुताबिक न्यूनतम अर्हकारी अंक यानी कट ऑफ जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय ऑनर्स स्नातक पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह सुविधा केवल उन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलेगी जिन्हें पहले से संबंधित विषय में 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम संचालित करने की यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। और आसपास कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं खोई हुई व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार गणेशी पुत्र जगदीश सिंह, निवासी सुदामापुरी नरायच, थाना ट्रांसयमुना, जनपद आगरा। गणेशी दिनांक 16 जून 2026 से रात 9 बजे से अपने घर से लापता है। गणेशी की उम्र लगभग 30 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ है। शरीर की बनावट सामान्य है, आंखें सामान्य हैं और शरीर में कोई विकृति नहीं है। गणेशी का सामान्य पहनावा कुर्ता पाजामा है। गणेशी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना ट्रांस यमुना, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार मनीष पुत्र सुनहरी लाल, निवासी गांव तेहरा, थाना सैया, जनपद आगरा। मनीष दिनांक 4 जून 2026 से शाम 5 बजे से अपने गांव तेहरा से लापता है। मनीष की उम्र 36 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला है। शरीर सामान्य है। मनीष के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सैया, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। मोहम्मद अमान पुत्र मोहम्मद शकील, निवासी घियाई मंडी, ताजगंज, आगरा। मोहम्मद अमान अपने घर से लापता है। मोहम्मद अमान की उम्र 26 वर्ष है। कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला है। आंखें काली हैं, बाल काले हैं। घटना के समय नीले रंग की पैंट और गहरे रंग की हरी टी शर्ट पहनी हुई थी।
मोहम्मद अमान के बारे में।

यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना ताजगंज जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर एक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजे हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको

0: हाथ दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका

0: फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है। वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026

0: gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जम्हूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमलों से गुरेज करे। इटली ने सियूटा माइग्रेंट्स बहरान के मामले पर खुली सरहद के रास्ते आने जाने की सहूलत मुअत्तल कर दी है। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत ने जूडो में सोने के दो तमगे जीते हैं, जो एक तारीख है। भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थोलॉन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराहकुन नौजवानों के तई हमदर्दी अख्तियार करने की अपील की है जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर इन नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाकये का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाकयात का नजारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाजह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इम्तिहानात के 2026 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त तर सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विजय नगरम जिले के भोगापुरम इलाके में अलूरी सीतारामा राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 18,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शहर मैसूर में नौजवानों के स्वामी विवेकानंद सकाफती मरकज विवेकानंद स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये मकाम भारत के सबसे अजीम रूहानी रहनुमाओं में शामिल स्वामी विवेकानंद के तारीखी दौरे की यादगार है, जो उन्होंने 1982 में किया था जो उन्होंने 1892 में किया था। इस दौरे में वो मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मिले थे और उन्हें महाराजा श्री चमाराजेंद्रा वडियार के हाथों माली मदद हासिल हुई थी। ये माली मदद शिकागो में मजहबों की पार्लियामेंट में शिरकत के मकसद से अमरीका जाने के लिए दी गई थी। तफसील हमारे

0: अमानिगार से।
1: विवेक स्मारक का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों आज मैसूर में किया जाएगा। ये यादगारी मकाम स्वामी विवेकानंद की तालीमात और फलसफे को फरोग देने के लिए है। 75,300 मुरब्बा फुट के रकबे पर 4D तजर्बेगाह, नुमाइश हॉल, एम्फी थिएटर, क्लास रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और एक मेडिटेशन और योग हॉल कायम किया गया है। बेंगलुरु से सुधीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: मरकजी काबीना ने तौसीशुदा खेलो इंडिया स्कीम और कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSFS की इमदाद में इजाफे को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा

0: 441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नौजवानों की सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और इसके लिए वाज़ह राह हमवार करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इस स्कीम से पूरे मुल्क में समाज की बिल्कुल निचली सतह से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम की सतह तक हर तरबियती मरकज कायम करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में आज से मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो रहा है जो दो मरहलों में डिजिटल तौर पर किया जाएगा। इस मशक का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ते नजर के जरिए अपडेट शुदा आबादियाती डेटा इकट्ठा करना है, जिसमें रियासत भर में जामे कवरेज को यकीनी बनाने के लिए दो मरहले के अमल को डिजाइन किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पहले मरहले में मगरबी बंगाल के बाशिंदे मर्दमशुमारी के सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात जमा करके आज से 15 अगस्त तक खुद की गिनती के अमल को ऑनलाइन तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। इसका दूसरा मरहला 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार घरों की फहरिस्त और इब्तदाई गिनती के लिए घर घर जाएंगे। आखिरी मरहला अगले साल फरवरी में होगा, जब मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार हर घर के फर्द के बारे में तफसीली मालूमात जमा करेंगे, जिसमें नाम, उम्र, जिंस, जात और मजहब की बुनियाद पर आबादी का हकीकी तौर पर इंदिराज होगा। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता और श्यामलाल गोस्वामी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात पाकिस्तानी इंतजामिया को शर्मनाक तरीके से मुस्तरद करने के मुदरातिफ हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी इंतजामिया कश्मीर के अपने जेरे कब्जा इलाके में पुरअमन शहरियों के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा 40 से ज्यादा शहरियों की अलमनाक मौत और बहुत सों के जख्मी हो जाने की शक्ल में बरामद हुआ है। रूसी फौज में भारतीय शहरियों के बारे में तर्जमान ने कहा कि रूसी फौज में बखिया भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए भारत रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से अभी तक 139 भारतीय शहरी रिहा कराए जा चुके हैं। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ते की बहाली होगी। तिजारत की बहाली से 6 साल तत्तुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तिजारत की बहाली से सरहद पार तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराकची से बात की और मगरबी एशिया खित्ते में जारी कशीदगी पर भारत की गहरी तश्वीश का इजहार किया। फोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत हाल में तजारती जहाजरानी और समंदरी अमले पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी फरीक की जानिब से किए गए इस तरह के किसी भी हमले की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मौजूदा वाकयात और जारी बातचीत के ताल्लुक से ईरान के मौकिफ से भी रोशनास कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बातचीत और सिफारतकारी की तायीद करता है। इटली ने स्पेन के साथ खुली सरहद के रास्ते सफर की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है, क्योंकि मराकश की जानिब से स्पेन के सियूटा इलाके में आने वाले माइग्रेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था। इस कदम से परवाजों और समंदरी ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। निज स्पेन के शेंचिंग खुली सरहद के सफर की सहूलत पर असर पड़ेगा, जिसे हाल ही में मुअत्तल किया गया है। अभी तक इस सहूलत के तहत लोग 29 यूरोपीय मुल्कों में आजादाना तौर पर आमदोरफ्त करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म एंड्री बर्नमैन से बातचीत की और ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातचीत में टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, दिफा, सलामती, साफ सुथरी तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के रिश्तों ने इस भारत बरतानिया जामे अहम शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मैदानों में मिलकर काम करने से इतफाक किया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ममालिक भारत और बरतानिया के अवाम की खुशहाली और तंदुरुस्ती के मकसद से तिजारत और सरमायाकारी के उन मौकों को भी पूरी तरह फरोग देंगे, जो भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर हाल ही में अमल दरामद से पैदा हुए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और

0: चौराहे में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, बिहार, सेली, हिमालयी मगरब, बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल भारत ने फिर से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने जूडो में सोने के दो तारीखी तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भी दो यादगार तमगे हासिल किए हैं, जबकि डेक्थलॉन में उसने अब तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। नेज 10 मुक्केबाजों ने अपने मुतअल्लिका जुमरों में फाइनल्स में जगह बनाई है। सरे 10 भारत सोने के 5, चांदी के 12 और कांसे के 6 तमगों के साथ कुल 23 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में 10वें मकाम पर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कल अपना दो रोजा भूटान का सरकारी दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दौरान जनाब मिश्री ने भूटान के 13वें पंचसाला मंसूबे के लिए 5वीं भारत भूटान तरक्याती ताउन मुजाकरात की मुश्तरक सदारत की। 5वें मंसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंचसाला मंसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये की इमदाद की मजमुई पेशरफ्त और अमल आवरी का जायजा लिया। मजमुई तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मंसूबों के लिए माली ताउन से मुतालिक 332 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, ज़राअत, शहरी सहूलियात और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के जरिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज्म व नस्क में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी जराए ने हमारे नामानिगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वस्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और अवामी नज्म व नस्क में कंपनी का क्या रोल है। यह टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजरेआम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ। दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दत कार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप से वजी अजम नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसमें कहा गया है कि आज आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपये से ज्यादा के मुतादी तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाक श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत के मुताबिक पेपर लीक के मुकदमात की समाअत अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके सबब बरसों से अदालतों में जेर इल्तवा मामलात में तेजी आएगी। नीज इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीरे आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तश्वीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज

और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार और सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रोमांस। गीत आनंद बख्शी का, संगीतकार है राहुल देव बर्मन, आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

0: रोमांस इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। 10 नंबरी इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज के लिए गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,
1: सारा दिन

0: ये दो आवाजें थीं, लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम था 10 नंबरी। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतांजलि कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत ये है, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल, गायक कलाकार किशोर कुमार।

ये वाहिद आवाज थी किशोर कुमार की, फिल्म का नाम था ब्लैकमेल, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, संतोष आनंद का लिखा गीत है, फिल्म का नाम है प्यासा सावन और गायिका हैं लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

लव स्टोरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार का।
1: सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद की खेसराहा थाने की पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा NCRP समन्वय पोर्टल पर दर्ज कुल 9 मामले के 15,47,63,520 रुपए के मामले में एक 20 वर्षीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से साइबर क्राइम कर इकट्ठा हुए रुपए से खरीदा गया एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप व साइबर ठगी के 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह अभियुक्त अपने 6 विभिन्न खातों में 14,00,000 रुपए का लेन देन कर चुका है। आगे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
2: NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है।
1: सिद्धार्थनगर जिले में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 45,65,400 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत सभी विभाग के कर्मचारियों व बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल व अन्य खाली स्थानों पर पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम विषय पर प्रसिद्धीय स्कूल के बच्चों ने मंच से इसकी महत्ता बताई। इस अवसर पर धौरी कुइया गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न धर्म के 146 जोड़ों का विवाह उनकी रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। जनपद मुख्यालय के BSA ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक विनय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही सहित जिले के आला अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा चुका है। वही जनपद सिद्धार्थनगर में इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लगातार लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस विशेष अभियान को गति देने के लिए विकास भवन से एक विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया जा चुका है, जो जनपद में सभी तहसील क्षेत्र के गांव, कस्बा व नगर में जाकर रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा। जनपद में तहसील स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक केंद्रों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप लगाकर संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही बचाव के लिए भी जानकारी दे रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मौसमी और संचारी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जिससे बरसात के दिनों में फैलने वाले जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक की आयोजित की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उनका लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी साल 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए वह हर मंडल में प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बड़पुर में ग्राम पंचायत बड़पुर नंबर 6 टोला माधवनगर में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की जिलाधिकारी श्री शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और उनसे बेहतर ज्यादातर का निपटारा मौके पर कर दिया। ग्रामीण चौपाल को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जिले भर में सप्ताह के एक दिन जिले के किसी एक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर

0: के हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे निपटाने की कोशिश की जाती है। कुछ समस्या जिनका निदान मौके पर नहीं हो सकता, उसको उसके लिए एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं को निदान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाती है।
1: सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज सिंह का।
2: जनपद सोनभद्र में करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचे मानसून के बावजूद सामान्य से कुछ ज्यादा वर्षा से किसान खुश हैं। धान की डाली गई नर्सरी के बाद किसान धान की रोपाई अभी भी कर रहे हैं। जनपद के लगभग आधे से कुछ कम हिस्सों में ही धान की रोपाई की जाती है, बाकी के हिस्सों में दलहन तिलहन की बुआई होती है, जिसके लिए हाल के समय की वर्षा पर्याप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ टीले नुमा है, ऐसे में धान की रोपाई करना किसानों के लिए संभव नहीं है। जनपद सोनभद्र में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी चर्चित दौड़ ने बताया कि शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जनपद ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का मारकुंडी क्षेत्र विंध्य और पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक कौशल विकास एवं रोजगार का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंगल विंडो के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार और स्वयं के उद्योग भी लगा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना युक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय एमएसएमई स्टार्टअप एवं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदिवासी बाहुल्य जनपद में स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद सोनभद्र के भवनी ब्लॉक की 1000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे के करीब बनाए जा रहे औद्योगिक हब के लिए जिलाधिकारी और उद्योग बंधुओं के बीच बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। जनपद में विगत दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल पाए। जनपद सोनभद्र में जिला उर्वरक निर्धारण समिति की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद की ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर सहकारी समिति एवं संबंधित एजेंसी पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हाल में खरीफ की बुआई में व्यस्त है, ऐसे में उर्वरक सही समय पर उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनपद सोनभद्र में संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। गाँव में नालियों की सफाई कराई गयी, पानी स्टोरेज इलाकों को चिन्हित करके दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस बीच आशा आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा लगातार संचारी रोगों से बचाव के लिए कार्य किए गए। जनपद सोनभद्र में अवस्थित रिहंद बांध की कैचमेंट एरिया में जल भराव उम्मीद के अनुरूप नहीं है। जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर रिहंद के जल स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को सुबह बांध का जल स्तर 854.4 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन बाद यह 868.1 फीट पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई माह में 22.7 फीट जल स्तर कम होने का असर आगामी समय में विद्युत उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने रिहंद के जल पर आधारित कई बड़ी तापी परियोजनाओं की स्थापना की है। रिहंद बांध से जुड़े एनटीपीसी की रिहंद नगर, सिंगरौली और शक्तिनगर परियोजनाओं के अलावा अनपरा तापी बिजली परियोजना, रेणु सागर ओबरा तापी परियोजना प्रमुख है। इन सभी संयंत्रों की शीतलन प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी रिहंद बांध से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रिहंद बांध से वर्ष भर सस्ती बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड़ ने विगत दिनों कन्हरा दैरपुर मार्ग पर बिजली बिजुल नदी पर दीर्घ सेतु की आधारशिला रखी। संजीव सिंह गोड़ ने बताया कि उत्तर सेतु के निर्माण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन

AIR ऐप पर। 9:25 और 35 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा।

ये है कार्यक्रम का पहला गीत। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार हैं हेमंत कुमार, फिल्म का नाम है नागिन, आवाज लता मंगेशकर की।

नागिन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार। आइए आप सुनते हैं रवि की तर्ज पर गुलशन बावरा के बोल। फिल्म का नाम है मॉडर्न गर्ल। आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की।

मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे गाया था सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बाबरा ने, धुन बनाई थी रवि ने। गीत मंजूषा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है मोती बीए ने और धुन बनाई है श्री रामचंद्रन ने।

नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में। गीत रचना मोती बी ए की थी और धुन बनाई थी सी रामचंद्रन ने। फरमाइश फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कमर जलालाबादी के बोल हैं, संगीतकार हैं हुस्नलाल भगतराम, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे कमर जलालाबादी का लिखा गीत। धुन तैयार की थी हुस्न लाल भगतराम ने, फिल्म का नाम था फरमाइश। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की गीत रचना। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अंजू शर्मा।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अंजू शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं मल्हार। आइए सुनते हैं एक और मल्हार, आवाज एक बार फिर अंजू शर्मा की है।

अंजू शर्मा के गाए इस ब्रज लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आपको याद दिला दें, दिन में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। कलाकार होंगे अशोक कुमार मथुरिया और राकेश कुमार सिंह तोमर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरसरिता और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार इस खूबसूरत गीत के साथ। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है काली घटा।

कालीघटा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए एक बार फिर सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, धुन एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लावारिस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। क्षमा कीजिए, ये गीत है फिल्म तराना से, आवाजें हैं शैलेन सिंह और उषा मंगेशकर की।

ये युगल आवाजें थीं शैलेन सिंह और उषा मंगेशकर की। फिल्म का नाम था तराना। गीत के बोल लिखे थे तिलक राज थापर ने और इसे संगीतबद्ध किया था रविंद्र जैन ने। सदाबहार फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं। गीत सुर सरिता कार्यक्रम में अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत एक व्यावसायिक अंतराल के बाद।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सुरसरता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लावारिस फिल्म का एक सदाबहार गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे अनजान की गीत रचना। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था लावारिस।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: यह है सुरसरिता कार्यक्रम का अंतिम सदाबहार गीत। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार विजय सिंह। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। फिल्म का नाम है कभी अजनबी थे।

ये दो आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। फिल्म का नाम था कभी अजनबी थे। गीत लिखा था देव कोहली ने, धुन बनाई थी विजय सिंह ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग रामकली। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं आज राधे तोरे। दुत ख्याल की बंदिश भी एक ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं जागरे सलोने बनने। तो आइए सुनते हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गाया राग

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग रामकली में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें समय कभी भुला नहीं सकता। उन्हीं में से एक नाम है मीना कुमारी, जिन्हें लोग प्यार से ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उन्हें ये नाम क्यों मिला? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्दे पर जितना दर्द जिया, उससे कहीं ज्यादा दर्द अपनी असल जिंदगी में महसूस किया।

1 अगस्त 1933 को मुंबई में जन्मी महजबीन बानो, जिन्हें दुनिया बाद में मीना कुमारी के नाम से जानने लगी, उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पिता अली बख्श रिटायर थिएटर कलाकार और संगीतकार थे, जबकि उनकी माँ इकबाल बेगम भी अभिनय से जुड़ी थी। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही महजबीन को कैमरे के सामने आना पड़ा। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें नया नाम दिया मीना कुमारी। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे संवेदनशील और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। संघर्षों से भरा बचपन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिसने उनके अभिनय में सच्चाई और गहराई भर दी।

साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, काजल, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी अभिनय की मिसाल माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी आंखें। बिना कुछ बोले वे अपने चेहरे के भावों से पूरा संवाद कह देती थीं। उनकी मुस्कान में भी दर्द दिखाई देता था और यही दर्द दर्शकों के दिल तक पहुंच जाता था। शायद इसी वजह से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला।

दोस्तों, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाली मीना कुमारी की असल जिंदगी उतनी ही अकेली और दर्द भरी थी। उन्होंने वर्ष 1952 में मशहूर लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही से विवाह किया। शुरुआत में दोनों के रिश्ते बेहद खूबसूरत थे, लेकिन समय के साथ दूरियां बढ़ती चली गईं और आखिरकार दोनों अलग रहने लगे। इस अकेलेपन ने मीना कुमारी को अंदर तक तोड़ दिया। वे अक्सर अपनी भावनाओं को शायरी के माध्यम से व्यक्त करती थीं और नाज के नाम से लिखती थीं। उनकी शायरी में दर्द, तन्हाई और अधूरे प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है। कहा जाता है, अभिनय उनके लिए काम नहीं बल्कि अपने दर्द को जीने का एक माध्यम था।

दोस्तों, मीना कुमारी ने अपने अभिनय से जो ऊंचाइयां हासिल की वो आज भी प्रेरणा देती हैं। वो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उन्हें ये सम्मान पैजू बावरा के लिए मिला। इसके बाद परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। और अब अगर मीना कुमारी की बात हो और पाकीज़ा का जिक्र ना आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। इस फिल्म को बनने में लगभग 14 साल लगे। इस दौरान उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से इस फिल्म को अमर बना दिया। दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को मात्र 38 वर्ष की आयु में लिवर सिरोसिस के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद पाकीज़ा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और आज भी भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिनी जाती है। सच ही कहा गया है, कुछ कलाकार अपने जाने के बाद और भी अमर हो जाते हैं।

तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना मीना कुमारी के जीवन का वो सफर जिसमें संघर्ष था, सफलता थी, प्रेम था, तन्हाई थी, पुरस्कार थे और एक ऐसी विरासत थी जो आज भी हिंदी सिनेमा को समृद्ध बना रही है। आइए विदा लेने से पहले एक बार फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उनका ये मशहूर गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दो ऐसे विषयों पर जो हम सभी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला है स्वदेशी से राष्ट्र समृद्धि, यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाकर कैसे हम अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं, और दूसरा विषय है शिशु के लिए अमृत है माँ का दूध, क्योंकि हर बच्चे की अच्छी शुरुआत उसकी माँ के दूध से ही होती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, अक्सर हम बाजार से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, पर क्या कभी भी आपने सोचा है कि उसका फायदा किसे होता है? जाहिर है, जो कंपनीज उस सामान को बना या बेच रही हैं। अब जरा सोचिए, यही सारा सामान अगर हम अपने देश में बना हुआ खरीदें तो उसका सीधा फायदा हमारे ही किसानों को, छोटे व्यापारियों को, कारीगरों को और लाखों लोगों को मिलता है। और यही है स्वदेशी की ताकत। महात्मा गांधी जी का कथन भी यही था कि अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो हमें अपने देश की बनी चीजों पर भरोसा करना होगा। आज भी उनकी ये बात उतनी ही सही लगती है। जब हम लोकल चीजें खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी में अपना योगदान करते हैं। आज हमारे देश में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी शुरुआत हमारे ही घरों से होती है। तो अगली बार जब भी आप खरीदारी करने जाएं, तो एक बार जरूर देखें कि क्या उसका कोई भारतीय विकल्प उपलब्ध है। सोचिए, अगर करोड़ों लोग ऐसा करने लगें तो देश कितना आगे बढ़ सकता है।

दोस्तों, आज असहयोग आंदोलन दिवस भी है। लगभग 100 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था, तब महात्मा गांधी जी ने लोगों से कहा था कि अगर हमें आजाद होना है तो विदेशी चीजों और विदेशी शासन का सहयोग करना बंद करना होगा। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, खादी पहननी शुरू की और स्वदेशी को अपनाया। उस समय ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि अपने देश के लिए प्यार और सम्मान दिखाने का तरीका था। आज बेशक हम आजाद हैं, पर स्वदेशी भावना आज भी उतनी ही जरूरी है। आज लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की है, और इसमें हम सबकी छोटी छोटी

दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हर घर की खुशियों और हर बच्चे के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी परिवार में एक नन्हा मेहमान आता है तो उसके बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना हर कोई करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे के जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत किसी महंगे टॉनिक या सप्लीमेंट से नहीं बल्कि उसकी माँ के दूध से होती है। यही कारण है कि हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान

सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। जन्म के बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होता। डॉक्टर इसे बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका भी मानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज होती हैं जो नवजात शिशु को कई तरह के संक्रमणों से बचाने में मदद करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सलाह है कि जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए और पहले 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान उसे पानी या किसी अन्य आहार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माँ का दूध ही उसकी हर जरूरत पूरी करता है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

दोस्तों, माँ का दूध केवल बच्चे का पेट ही नहीं भरता, बल्कि उसके शरीर, दिमाग और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव भी रखता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन बेहतर रहता है और भविष्य में कई बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। वहीं स्तनपान माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक।

है। इससे प्रसव के बाद शरीर जल्दी सामान्य अवस्था में लौटता है और कई गंभीर बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे के बीच जो अपनापन और भावनात्मक रिश्ता बनता है, वही बच्चे के आत्मविश्वास और मानसिक विकास की पहली सीढ़ी बनता है। इसलिए केवल माँ ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि वह नई माँ का साथ दे, उसे पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और सकारात्मक माहौल दे। आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम सभी ये संकल्प लें कि हर माँ को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करेंगे और ये संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे, क्योंकि माँ का दूध केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन की सबसे स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम लोक मंजरी का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति में आइए सुनवाते हैं हम आपको अशोक कुमार मथुरिया की आवाज में कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।
1: संजना, संजना,
2: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ, यही तो है सब निशानियां। हाँ, इसी का नाम।

शान की आवाज में यह गीत था फिल्म राजू चाचा से, जतिन ललित की धुन पर, बोल थे आनंद बख्शी के। अगला गीत है फिल्म करम से, अलीशा चिनॉय की आवाज में। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत विशाल शेखर का।

टीआर वाजपेयी की आवाज थी। जुनैद वासी के शब्दों को संगीत से सवारा था चिरंतन भट्ट ने। फिल्म का नाम था हॉन्टेड। कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश है फिल्म बागी से मोनाली ठाकुर की आवाज में। मीत ब्रदर्स की धुन है।

सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत था फिल्म चमेली से। इरशाद कामिल की रचना को संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्य ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
2: నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను.
3: సాథ్యో బీతే 12 ఇయర్స్ మే దేశ్ కే ఏవియేషన్ సెక్టర్ నే అసాధారణ ప్రగతి కీ. 2014 తక్ దేశ్ మే కేవల్ 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
1: Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center or Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892. When he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. Price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paise, and in Mumbai it will be 2,691 rupees 50 paise, and in Chennai 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from

0: from today. In Jammu and Kashmir, the second laborer injured in the terrorist attack in the Kelam area of Kulgam district succumbed to his injuries this morning, taking the death toll to two. The two laborers working at a brick kiln were fired upon by unidentified terrorists last evening. Soon after the incident, the area was cordoned off and a massive search operation was underway to trace the terrorists. Chief Minister Umar Abdullah has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each from the Chief Minister's Relief Fund for the next of the kin of the deceased, in addition to 6 lakh rupees immediate assistance to be provided by the Kulgam District Administration. The Election Commission has revised the schedule for the special intensive revision of the electoral rolls in Telangana. The Commission said the revision of the schedule has been carried out following a request from the Chief Electoral Officer of Telangana. According to the revised schedule, booth-level officers will conduct house-to-house verification till the 10th of this month. Rationalization and rearrangement of polling stations will also be completed by the same date. The draft electoral roll will now be published on the 17th of August. The period for filing claims and objections will continue from 17th of August to 16th of September, while their disposal will be completed by 15th of October. The final electoral roll will be published on 19th of October. The India Meteorological Department, IMD, has said that rainfall over the country is likely to be below normal during the second half of the southwest monsoon season. The IMD said rainfall is expected to be less than 94% of the long period average in this month. The weather agency added that these conditions are expected not to prevail over many areas of eastern peninsular India, some areas of northwest, central India and isolated areas of east and northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। यह बिल जमेरात को पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। इसका मकसद सख्त सजाओं की फराहमी और फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करके अवामी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तर्ज अमल को रोकना है। यह बिल एक मजबूत कानूनी ढांचा तश्कील देकर इम्तिहानी निजाम में शफाफियत, इंसाफ पसंदी और दयानत को मजबूत करने की कोशिश करता है, जो तलबा के मुस्तकबिल की हिफाजत करता है। इस एक्ट में कई अहम दफात शामिल हैं, जिनमें सख्त सजाएं जैसे 10 साल तक कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजायाफ्ता मुजरिमों की जायदाद जब्त करना शामिल है। मुकदमात को तेजी से निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक्ट हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से रोजाना की समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का मतालबा करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि थाने में मालूमात के इंदिराज की तारीख से 2 माह के अंदर जराइम की तफ्तीश मुकम्मल की जाए, जबकि चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से 3 माह के अंदर मुकदमात की समाअत मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए की मालियाती रकम की मंजूरी दी गई। मरकजी इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस स्कीम के जरिए अहल किसान खानदानों को DBT के जरिए बरवक्त और शफाफ आमदनी की मदद फराहम की जा रही है, जिससे किसानों को जरई सरमायाकारी बढ़ाने और उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: इसके अलावा काबीना ने खेलो इंडिया की तौसीई स्कीम को मंजूरी दी है और 2026-27 से 2030-31 की मुद्दत के लिए 36,441 करोड़ रुपए के मुश्तरका अखराजात के साथ कौमी खेलों की फेडरेशनों के लिए तावुन में इजाफा किया। मंजूर शुदा बजट पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग 8 गुना है। लखनऊ के रिहायशी और बैन अल-अक़वामी पैरा बैडमिंटन में सोने के तमगे समेत मुतअद्दिद तमगे हासिल करने वाले अबू हुबैदा ने हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा,
3: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। खेलो इंडिया योजना और राष्ट्र खेल महासंघों के ऐतिहासिक बजट बढ़ाना देश के लाखों खिलाड़ियों, विशेषकर पैरा खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद और नई शक्ति लेकर आया है।
1: मरकजी काबीना ने 5,700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल

0: पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर और अंदरूने मुल्क आबी जखायर के इख्तराई इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत देगी। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए पुरज्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नफरत अंगेज तकरीर और नफरत से कोई मसला हल नहीं होता। उन्होंने गुमराह नौजवानों से हमदर्दी पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि कौम की तामीर और मुल्क की मफाद में उन्हें सजा देने के बजाय राह रास्त पर लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम में वजीर आजम ने जंतर मंतर के हालिया वाकये का हवाला दिया, जहां उनके और उनकी मरहूम वालिदा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह वाकया मुल्क और दुनिया भर के लोगों ने देखा है और मुआशरे में इस तरह के रवैये पर गुस्सा और मायूसी फितरी है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उनकी इस्लाह का दौर भी होता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन और यौम आजादी की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रियासत के लोगों पर जोर दिया कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस साल 50 मिलियन घरों पर कौमी परचम लहराने का हदफ मुकर्रर करें। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त को देश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं।
0: श्रावण के मुकद्दस महीने के दौरान रियासत भर में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों और यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही अकीदतमंद वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में गंगा के पानी के साथ बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। दरियासना कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। और महकमा मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों के कई अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उधर पहाड़ों में मुसलसल बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं में दरियाए कचला, गंगा की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके नतीजे में जिले के 36 देहात जेरेआब हो गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, अब समय है हमारी ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का।

साथ बहनों, आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट, और आज के इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शोभना। स्वीकार करिए हमारा राम राम। सखियों, हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम अपने परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण और घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। बहनों, बरसात का मौसम हरियाली, ठंडी हवाएं और खेतों में नई उम्मीदें लेकर आता है। किसान के लिए ये मौसम खुशियों का संदेश लेकर आता है, लेकिन इसके साथ ये मौसम कई तरीके की बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करें तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, दस्त, हैजा और वायरल बुखार जैसी बीमारियां पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है बहनों कि इन बीमारियों से बचाव बहुत ही आसान है। अगर हम स्वच्छता और कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं तो अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बरसात के मौसम में हमें किन बातों

0: का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो बहनों, सबसे पहले तो स्वच्छ पानी का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ, उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। पानी के बर्तनों को ढककर रखना चाहिए ताकि उसमें धूल, गंदगी या मच्छर ना पनप सके। दूसरी बात, भोजन की स्वच्छता। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। बासी खाना, खुले में बिकने वाला खाद्य पदार्थ और कटे हुए फल खाने से बचना चाहिए। भोजन बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से कम 20 मिनट 20 सेकंड तक हाथ अवश्य धोएं। बहनों, बरसात में सबसे बड़ा खतरा मच्छरों से होता है, इसीलिए घर के आसपास कहीं पर भी अगर आपको लगता है या दिख रहा है कि पानी जमा हो रहा है तो प्लीज़ वहां पर पानी जमा ना होने दें। कूलर है, गमले हैं, टायर है, बाल्टी है, टूटे बर्तनों में जमा पानी समय समय पर ही खाली करती रहें। रात में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। घर और आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। नालियों की नियमित सफाई करनी चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। शौचालय का उपयोग करें और बच्चों को भी स्वच्छता की अच्छी आदतें सिखाएं। बरसात में बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, इसीलिए आपको उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि किसी को तेज़ बुखार, लगातार उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द, सांस लेने में परेशानी या ज़्यादा कमजोरी महसूस हो तो बिना देर किए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और बहनों, बिना सलाह के तो कभी भी कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो सखियों, एक और महत्वपूर्ण बात, साफ सफाई केवल हमारे घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा गांव स्वच्छ रहेगा तभी हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी निभाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि बीमारी का इलाज कराने से बेहतर है कि हम पहले ही उससे बचाव कर लें। और आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि स्वच्छ घर, स्वच्छ आंगन, स्वच्छ गांव बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज बनाएंगे। तो बहनों, हम सभी जानते हैं या हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान रहे, लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाइयाँ या फिर इलाज ही ज़रूरी है, जबकि सच ये है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हमारी रोज़ की थाली से होती है। यदि हमारा भोजन संतुलित और पौष्टिक होगा तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने दैनिक कार्य पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। विशेष रूप से जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, किशोरियां हैं और बुजुर्ग, इनके लिए तो संतुलित आहार का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यही उनके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को सरल और सहज भाषा में समझाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक विशेष वार्ता, जिसका विषय है स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित आहार। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच अपने विचार साझा करेंगी गीतेश पाठक जी। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं गीतेश पाठक जी की ये उपयोगी वार्ता, स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित आहार।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ शरीर एक सपना सा होता जा रहा है। हम अपने काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के प्रति तो पहले से अधिक सचेत हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं अपने खान पान के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज 10 में से हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है, इसीलिए मोटापा आज एक आम समस्या हो गई है। इसने बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी सोचा है इन सब समस्याओं का कारण क्या है? गौर करने पर पता चलेगा कि इन सब समस्याओं का कारण है हमारा खानपान। गलत खानपान के कारण अनजाने में हम खुद बीमारियों को दावत देते हैं। आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन है, इसे खाना हम अपनी शान समझते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये खाना हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। पौष्टिक आहार तो हमारी थाली से गायब ही हो गया है। दालें, सलाद, दलिया, खिचड़ी, इन सब का स्वाद तो जैसे हम भूलते ही जा रहे हैं। पहले हमारी दादी माँ, नानी घर पर ही लड्डू मठरी बनाकर रखती थी। जब किसी बच्चे को बहलाना होता था या कोई

मान घर पर आता था या किसी बच्चे को शाबाशी देनी होती थी, तब दादी माँ बड़े प्यार से उसे एक लड्डू और मठरी देती थी, जिससे दादी और नानी के प्यार के साथ साथ सेहत का आशीर्वाद भी मिलता था। लेकिन अब इसकी जगह पिज्जा, कुरकुरे, बर्गर ने ले ली है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हम खुद तो फास्ट फूड खाते ही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी बड़े चाव से खिलाते हैं, और मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारियों से घिर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए। आज की इस महंगाई की जिंदगी में पेट भरना तो मुश्किल है, ऐसे में संतुलित आहार कंगाली में आटा गीला करने जैसा है। इसके लिए बस आपको इतना करना है, पहले तो आप बाहर का खाना खाना बंद कर दें, अपने भोजन में दाल, मौसमी फल, हरी सब्जियां आदि का प्रयोग करें। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जी हाँ ये कहावत 100% सच है। संतुलित भोजन ही स्वस्थ शरीर की नींव है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी हमारे भोजन में होना जरूरी है। संतुलित भोजन आपको स्वस्थ दिमाग के साथ साथ मजबूत शरीर भी देगा। हर इंसान के शरीर की अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे एक गर्भवती महिला की जरूरत अलग है, एक बच्चे की अलग, और एक वयस्क या एक बुजुर्ग की जरूरत अलग है। बच्चे के शरीर को बढ़ने और मजबूती देने के लिए संतुलित भोजन अत्यधिक आवश्यक है। प्रतिदिन फलों का प्रयोग करें, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे। इससे आपका समय और पैसा और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे। प्रतिदिन थोड़े थोड़े सूखे मेवे नाश्ते में खाने की आदत डालें, ये आपको स्फूर्ति के साथ साथ ऊर्जा भी देंगे। दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, ये पेट को भी ठीक रखेंगे साथ ही साथ आपको ऊर्जा भी देंगे। अपने खाने में सलाद को जरूर शामिल करें, ये आपके खाने का मजा तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी चार चांद लगा देगा। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर चलने, विकास, मरम्मत के लिए ऊर्जा पैदा करता है। संतुलित आहार वो है जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व प्रदान करे। पौष्टिक नाश्ता वह है जो विटामिन से भरपूर हो। आपके नाश्ते में फल, मिश्रित सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल को शामिल कर सकते हैं। सही समय पर भोजन करें, खाली पेट ना रहें। खाली पेट रहना नुकसानदायक हो सकता है, इससे शरीर में आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाएगी। दिन में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी मेटाबॉलिक कचड़े को गुर्दे के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी भरपूर मात्रा में पिए। जब हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे अंदर सुस्ती और एसिड के स्तर में वृद्धि हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर का निर्माण पोषक युक्त आहार से होता है। हठ योग प्रदीकाप में आहार का वर्णन करते हुए कहा गया है, सुस्कंद मधुरा हार चतुराश विवर्जितः भुजते शिव संप्रत्यय मितहार स उच्चते। अर्थात आहार भली प्रकार से चिकना व मधुर हो। भोजन भगवान को सादर समर्पित करें और उसे प्रणाम करें। अपने पेट को थोड़ा खाली रखें। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए। हमेशा ऐसा भोजन करें जो धातुओं का पोषण करने वाला हो और मन को अच्छा लगने वाला हो। भोजन केवल भूख मिटाने व पेट भरने का साधन नहीं है, इससे शरीर में रक्त, मांस, मेद, हड्डी, शुक्र बनती है, इंद्रियों को बल मिलता है। पौष्टिक व संतुलित भोजन शरीर का विकास करता है और उसे निरोगी बनाता है। हमें ध्यान रखना है कि भोजन में सभी आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल पर्याप्त मात्रा में हों। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। खाना खाने से आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पानी पिएं। देखा जाए तो हमारी जीभ दो ही कार्य करती है, पहला खाना खाना और दूसरा बोलना। यदि इन दोनों ही कार्यों को वश में कर लिया जाए तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और सुखी बना रहेगा। व्यक्ति प्रकृति के जितना नजदीक रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है, इसीलिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, अनाज, मेवों को अपने खान पान में शामिल करें। कोल्ड स्टोर में रखी हुई चीजों से परहेज करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना समय हम खाना खाने में लगाते हैं वह सब बेकार चला जाता है, इसीलिए क्यों ना खाते खाते कुछ और काम भी कर लिया जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दो काम एक साथ करते हैं तो दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं।
अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहें।

0: और मस्त रहें।
1: तो सखियों, अभी आपने सुनी गीतेश पाठक जी की वार्ता। इस वार्ता से हमें ये समझ में आया कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल भरपेट भोजन ही नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है। और साथ ही जब हम संतुलित रहते हैं तो खुशियाँ और सकारात्मकता भी हमारे जीवन में आती है। और जब बात खुशियों की हो तो भला सावन का महीना कैसे पीछे रह सकता है। सावन आते ही गाँव की गलियाँ, पेड़ों पर पड़े झूले, हरी भरी धरती मन को नई उमंग से भर देती है। तो आइए अब स्वास्थ्य की बातों के साथ सावन की मिठास भी अपने मन में घोलते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बहनों, देखते हैं आज दादी का बटुए में क्या है आपके लिए। तो बहनों,

0: बरसात चल रही है, ऐसे में क्या है कि हमारी बहनें बाहर जाती होंगी तो कभी भीग भाग भी जाती होंगी। तो बहनों, बारिश में भीगने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना, वो आती है हमारे बालों की। उनको कैसे साफ़ किया जाए? तो बहनों, सबसे पहले अगर आप बारिश में भीग गई हैं तो बालों को साफ़ पानी से आपको ज़रूर धोना चाहिए ताकि गंदगी और जो प्रदूषण है उसमें से निकल जाए। और सप्ताह में 2 से 3 बार आपको शैम्पू ज़रूर करना है। और गीले बालों में कंघी कभी नहीं करनी, इससे क्या होता है ना, बाल ज़्यादा टूटते हैं। और बालों को लंबे समय तक गीला भी ना रखें, इससे क्या होगा, डैंड्रफ हो जाएगा, फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नारियल या फिर बादाम का तेल सप्ताह में 1 से 2 बार, इससे आपको हल्की मालिश करनी है। अब बहनों, ये तो बात हुई बालों की, बात करते हैं अपनी त्वचा की। दिन में 2 बार आपको बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से या किसी से भी साबुन से, जिससे आपको सुविधा हो, आप उससे अपना चेहरा ज़रूर धोएं। त्वचा को साफ और सूखा रखें, खास करके पैरों की उंगलियों के बीच की जगह को। बाहर से आने के बाद हाथ पैर अच्छी तरीके से धोएं, खूब सारा पानी पीजिए और मौसमी फल सब्जियां ज़रूर खाएं ताकि जो आपकी त्वचा है ना वो स्वस्थ रहे। अगर खुजली, लाल चकत्ते या फंगल संक्रमण दिखे तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय बहनों डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बहनों, बरसात का मौसम अपने साथ ठंडक और हरियाली लाता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़रूरी है। बालों और त्वचा की नियमित सफाई रखें, संतुलित भोजन करें और किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो बहनों, इसी के साथ खुश रहने का मज़ा आता है अपनी रसोई में, वो तो हमारी सारी बहनें जानती हैं। तो बहनों, चलिए चलते हैं अपनी रसोई की तरफ। बरसात का मौसम पता ही है कि ठंडक लाता है, हरियाली भी लाता है, लेकिन इस समय हमारे क्या होती है ना, पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा भोजन करें जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो, शरीर को ऊर्जा दे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में भी मदद करे। तो बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही आसान और हेल्दी रेसिपी जिसे घर में उपलब्ध सामग्री से आप आसानी से बना सकती हैं। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं मूंग दाल चीले की। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 कप भीगी हुई मूंग दाल, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटी गाजर कद्दूकस की हुई, हरी धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च आपकी इच्छा अनुसार, आपको जितना तीखा पसंद हो बहनों, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा तेल। अब आपको इसको बनाना कैसे है, भीगी हुई मूंग दाल को पीसकर घोल तैयार कर लें। इसमें प्याज, गाजर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जीरा, हल्दी और नमक को मिला लीजिए। अब क्या करना है, तवा गरम करने रख देना है और उसमें थोड़ा सा तेल लगा दें और घोल फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक उसको सेक लें और इसे हरी चटनी या फिर दही के साथ गर्मा गर्म परोसें। बहनों, मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। गाजर है, हरी सब्जियां हैं जो कि विटामिन्स और फाइबर्स देती है जो पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। बरसात के मौसम में ये हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन है जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। तो बहनों, इसी के साथ रसोई को करते हैं बंद और रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ। तो बहनों, सावन आ ही चुका है, हमारी सखियां खाने के साथ साथ पसंद करती हैं अपने मायके जाना। देखा बहनों, तो बहनों मायके तो जाना ही है क्योंकि सावन का महीना लग गया, पर बहनों और हम चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, आपको मायके लेकर चलेंगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: सावन हो सावन,

तो बहनों, उम्मीद है कि ये लोकगीत आपको पसंद आया होगा। भाई, सावन का महीना है, हमारी हर सखी के दिल में यही होता है कि वो भी अपने पेहर जाए और झूले पे झूला झूले, घेवर खाए। हमें भी ऐसे लगता है बहनों। तो इसी अच्छी सी याद के साथ ही घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का। तो सखियों, कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: Aaj yahan kareeb 18,000 crore rupees ki vikas pariyojanaon ka shubharambh, lokarpan aur shilanyas hua hai. Airport ke saath saath ye project Andhra ki road connectivity se bhi jude hai. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है.
0: मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड द न्यू एयरपोर्ट एज द रनवे फॉर द ग्रोथ ऑफ आंध्र प्रदेश पर्टिकुलरली नॉर्थ आंध्र एंड अ लॉन्च पैड फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट्स यूथ. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 years में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है. हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है. इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की. कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे.
0: मिस्टर मोदी सेड द सेंटर इज ट्रांसफॉर्मिंग आंध्र प्रदेश इनटू अ मेजर ग्रोथ इंजन थ्रू पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज एंड लॉजिस्टिक्स under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernized. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: Mujhe pura vishwas hai, aaj yahan jitne bhi project ki shuruaat hui hai, jinki neev

0: finals yesterday, guaranteeing at least silver medals and marking India's best ever boxing performance at the Commonwealth Games. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha, with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
4: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को

0: गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था, इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद

0: हुआ है जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनीता सेन का गाया ठुमरी गायन।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीता सेन का ठुमरी गायन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म सगाई से। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में ढाला था सी रामचंद्र ने। अगला गीत है फिल्म पूर्णिमा से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कमाई कुछ तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा।

एसडी बर्मन को आपने सुना फिल्म गाइड में, गीत शैलेंद्र का था, संगीत एसडी बर्मन का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म रेफ्यूजी से। अनु मलिक की धुन पर बोल थे जावेद अख्तर के। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म जख्म से अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, एम एम करीम की संगीत।

अभिजीत को आपने सुना फिल्म अंजाम में समीर की शब्द रचना थी, आनंद मिलिंद की संगीत रचना। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म संघर्ष से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की। जतन ललित की धुन पर बोल है समीर के।

लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वर थे। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से सवारा था शिवहरि ने। फिल्म का नाम था डर। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास

0: के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युववाणी में 5:30 पर चर्चा का विषय होगा अमृत भारत स्टेशन योजना। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता वर्तमान संदर्भों में लोकमान्य तिलक की प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह। आइए जाने क्रम में बात होगी ब्लू माइक्रो मून के बारे में। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा होगी मुख्यमंत्री

ग्रामोद्योग रोजगार योजना विषय पर, साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और कुछ लोकगीतों के अलावा अशोक कुमार सिंह की वार्ता, विषय होगा महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्तता की प्रतीक दीप्ति शर्मा। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आपको सुनवाएंगे श्रीमती नीरज कुशवाहा की वार्ता दहेज नहीं गुण देखिए, साथ ही चर्चा होगी असहयोग आंदोलन दिवस पर। इसके अलावा आज के आकर्षण हैं आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स, नई खोजें और फिल्मी गीत। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे पंकज गुप्ता। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात 8:00 आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में और 9:30 पर सुनिएगा रेडियो पत्रिका साहित्य भारती, इसमें आप सुनेंगे वृत्तचित्र आजादी का काव्य पथ। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

और अब रूपरेखा सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन में आप सुनेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। श्री रामचरित मानस गान का संगीत में प्रसारण सुना जा सकेगा 6:35 पर। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। विषय होगा गाय के गोबर एवं मूत्र का महत्व। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे डॉक्टर सत्यमित्र की वार्ता गले के रोग और उनका उपचार विषय पर। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम गीतांजलि में आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत कल सुबह 8:45 पर। 9:25 पर कार्यक्रम गीत मंजूषा में सुनिएगा पुरानी फिल्मों से तराने। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार होंगे फूलचंद गोस्वामी और उनके साथी। 10:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुरसरिता में सदाबहार फिल्मी गीतों का। 11:00 हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है। दिन में 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी में नौटंकी गोवर्धन लीला। दिन में 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने। 1:15 पर कार्यक्रम बाल मंडल में चर्चा होगी मित्रता अनमोल रिश्ता विषय पर। रोचक जानकारी में बात होगी इंद्रधनुष के 7 रंगों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे बाल गीत कहानी चालाक बंदर। चलते चलते क्रम में बात करेंगे बारिश में सेहत का ख्याल रखें विषय पर। पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आप सुनेंगे तलत महमूद की गाई कुछ गजलें। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

0: अभी आपने सुना लो में आ गया फिल्म का भक्ति गीत उदित नारायण नूतन और साथियों के स्वर में। देव कोहली की शब्द रचना को संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: अब आइए सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म का भक्ति गीत अजीज नाजन कंचन और साथियों के स्वर में। इस भक्ति गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में पंडित किरण मिश्रा की रचना को संत ज्ञानेश्वर फिल्म से।

संत ज्ञानेश्वर फिल्म के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरसंध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार प्यारे युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूँ कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम करते हैं आपसे ढेर सारी बातें और खूब थोड़ा एंटरटेनमेंट। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश अवश्य कर रहे होंगे। साथियों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी हमें बदलाव और नई सोच को अपनाना पड़ता है, मानते हैं या नहीं? बिल्कुल,

आज हम ऐसे ही एक और बदलाव की बात करेंगे जो सिर्फ सुविधाओं को नहीं बल्कि लोगों के सफर और अनुभव को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि रेलवे स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं होता बल्कि वे शहर की असली पहचान होता है, शहर की पहली पहचान होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी नए शहर में कदम रखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? स्टेशन पर। स्टेशन पर सिर्फ दोस्तों ट्रेनें नहीं आती बल्कि हजारों कहानियां, संघर्ष और यादें भी जुड़ी होती हैं। लेकिन समय के साथ हमारी जरूरतें और अपेक्षाएं दोनों बदली हैं। आज के यात्री को सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं, कंक्रीट की चार दीवारें नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसा अनुभव चाहिए जहां सफाई हो, सुरक्षा हो, आधुनिक तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू की गई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की एक दीर्घकालिक पहल है। इसका उद्देश्य पुराने पड़ चुके स्टेशनों को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाना है। अब सवाल ये है कि इस बदलाव के जमीनी मायने क्या हैं? सबसे पहले फोकस है यात्री सुविधाओं पर। बेहतर वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय, आरामदायक सीटें, उचित रोशनी, एक्सेलेटर, लिफ्ट और मुफ्त वाईफाई जैसी बुनियादी चीजें अब प्राथमिकता बन रही हैं। इसके अलावा स्टेशनों पर आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट्स को भी सुधारा जा रहा है जिससे भीड़भाड़ से मुक्ति मिल सके। डिजिटल डिस्प्ले और बेहतर सूचना तंत्र से यात्रियों को ट्रेनों की लाइव स्थिति समय पर मिल सके। इस योजना का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि हर स्टेशन को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा रहा। डिजाइन तैयार करते समय स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला और इतिहास का भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी स्टेशन सिर्फ आधुनिक नहीं बल्कि उस शहर की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश करेगा। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प पहल है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसका मकसद रेलवे स्टेशनों को स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए मंच देना है। किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और स्थानीय खाद्य उत्पाद या पारंपरिक कलाकृतियां अब स्टेशनों पर स्टॉल के जरिए बेची जा सकेंगी। इससे स्थानीय कला को पहचान और आर्थिक संबल दोनों मिलने की संभावना है। लेकिन हमें यहाँ भी देखना होगा कि क्या इन छोटे दुकानदारों को वास्तव में मुनाफा हो रहा है। जब तक इन उत्पादों के लिए स्थायी बाजार और खरीदार नहीं मिलेंगे तब तक केवल स्टेशन बना देने से बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं युवाओं के नजरिए की, क्या इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं? बुनियादी ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं है। जब बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण होता है तो निर्माण इंजीनियरिंग, प्रबंधन और आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ती है। लेकिन आज के युवाओं के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केवल एक डिग्री हासिल कर लेने से इन अवसरों का लाभ नहीं मिलेगा। आज प्रतिस्पर्धा का स्तर बदल चुका है। डिजिटल लिटरेसी, व्यवहारिक ज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना इस बदलते दौर में भाई टिकना बहुत मुश्किल है। अमृत भारत योजना का एक और अहम पहलू है एक्सेसिबिलिटी। एक सही मायने में विकसित ढांचा वही है जिसके लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, ना कि केवल एक सक्षम वर्ग को। इसके साथ ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना होगा। भविष्य के रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा दक्ष यानी एनर्जी एफिशिएंट और हरित बनाना वक्त की मांग है, सिर्फ दिखावा नहीं। क्योंकि विकास का असली मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता बल्कि ऐसी सुविधाएं तैयार करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हो। जब टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी एक बेहतर और आधुनिक भारत का निर्माण होगा। और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे सवाल पूछने का। आज हम सभी जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है। बताइए उनका वो कौन सा प्रसिद्ध स्लोगन था जिसने आजादी की लड़ाई में नई ऊर्जा भर दी? आप सोचिए सवाल का जवाब और हम देंगे उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में। दोस्तों जब हम अपने देश के उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया तो दिल में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना अपने आप जाग उठती है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं एक खूबसूरत

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अब बात करते हैं तिलक जी की, जिनके विचार आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केवल स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता ही नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जन जागरण के प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और लोगों में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया। आज के समय में जब युवा नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब तिलक जी के विचार हमें अपने कर्तव्यों, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं इसी विषय में थोड़ा और एक वार्ता के द्वारा, जिसका विषय है वर्तमान संदर्भों में लोकमान्य तिलक की प्रासंगिकता। वार्ताकार हैं अनिंद्र सिंह।
3: आज जब भी हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचारों को स्मरण करते हैं, तो उन दिव्य व्यक्तित्वों में एक नाम सर्वप्रथम हमारे मन में उभरता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा, नई चेतना और एक अविचल आत्मबल प्रदान किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब लोकमान्य तिलक ने ये हुंकार भरी थी, तब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अधिकांश लोग अंग्रेजी सत्ता को भाग्य मानकर स्वीकार

स्वीकार कर चुके थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनका एक मात्र नारा भर नहीं था, यह एक आंदोलन था, एक समर्पण था, एक संकल्प था। उन्होंने कहा कि परतंत्रता मनुष्य की आत्मा को कुचलती है, अगर कोई राष्ट्र आत्मसम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो उसकी संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी आत्मा विलुप्त हो जाएगी। तिलक का यह संदेश लोगों में आशा का संचार करता था। वे कहते थे, फ्रीडम इज नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम एनीवन, इट्स ए बर्थ राइट। किंतु आज जब भारत स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और विश्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा चुका है, तब भी यह उद्घोष केवल इतिहास की प्रतिध्वनि नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के लिए भी एक नैतिक और आत्मबल से परिपूर्ण एक ऐसा आह्वान है जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। आज जब हम भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं तो तिलक जैसे

0: आत्मबल से परिपूर्ण एक ऐसा आह्वान है जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। आज जब हम भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं तो तिलक जैसे महापुरुषों का योगदान उनका मानवतावादी राष्ट्रवाद एक दीपशिखा की भांति है जो हमें अंधकार में प्रकाश देता है। उनका संपूर्ण जीवन विद्या, विचार और वैचारिक स्पष्टता के प्रतीक बनकर हम युवाओं के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही वे एक विचारक, शिक्षक, लेखक और राष्ट्र निर्माता थे। वे मानते थे कि ज्ञान का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा है। उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। वे कलम के क्रांतिकारी थे। वे कहते थे, हमारी कलम तलवार से अधिक धारदार होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने दो समाचार पत्रों, केसरी और मराठा, जिनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंग्रेजी शासन के दमन और भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के मुद्दों पर जनमत तैयार किया। पत्रकारिता और शिक्षा के माध्यम से नई चेतना का निर्माण कर उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से भारतीय समाज को एकता, साहस और आत्मबल की दिशा दी और सचमुच उनके लेख अंग्रेजों को हिला देते थे। 21वीं सदी का भारत जब डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि तिलक जैसे राष्ट्र नायकों की विचारधारा आज भी कितनी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में जब युवा पीढ़ी सिर्फ करियर ओरिएंटेड हो गई है, तिलक की यह सीख कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज और राष्ट्र की सेवा में प्रयुक्त हो, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिलक का यह दृष्टिकोण कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। आज की शिक्षा प्रणाली में मूल्यों और नैतिकता की पुनर्स्थापना की आवश्यकता पर बल देता है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो तिलक का यह भाव कि अगर आप में आत्मबल और संकल्प है तो हर परतंत्रता की दीवार गिराई जा सकती है, अत्यधिक प्रासंगिक बन जाता है। आज जब भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता की मिसाल बना है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वदेशी और विकसित भारत जैसे अभियान चल रहे हैं, तिलक की वह सोच मार्गदर्शक बन जाती है कि संस्कृति से ही राष्ट्र की आत्मा जागती है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज को एक सूत्र में बांधने का सबसे प्रभावी माध्यम संस्कृति ही है। ये राष्ट्रवादी सोच तिलक की ही देन थी। तिलक पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने ये समझा कि जब तक सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक आंदोलन का समन्वय नहीं होगा तब तक जनता पूर्ण रूप से आंदोलित नहीं हो सकती। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से न केवल सांस्कृतिक एकता बढ़ी बल्कि सामाजिक चेतना का भी विस्तार हुआ। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम न केवल श्रद्धा के प्रतीक बने बल्कि युवाओं में ऊर्जा, साहस और संगठन की भावना का संचार करते हुए जन जागरण के सशक्त मंच बन गए। वैसे तो तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे जो मानते थे कि केवल विनम्र प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने आत्मबल, संघर्ष और जनजागरण से स्वराज्य प्राप्ति का बिगुल तो बजाया किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव और लोकशक्ति पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने हमेशा कहा कि शासन की वैधता जनता की स्वीकृति से तय होती है। आज के लोकतंत्र में जब जन भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात होती है, तिलक के सिद्धांत लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हम युवाओं के लिए यह सीख अत्यंत आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं कर्तव्य भी हैं। तिलक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक मंच तक जवाबदेही और नैतिकता महत्वपूर्ण है। तिलक की राजनीति राष्ट्रहित और जनकल्याण की नींव पर टिकी थी। आज जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ, तुष्टिकरण और अवसरवाद बढ़ता दिखाई देता है, तब तिलक की यह स्पष्ट अवधारणा कि जो भी करो वह राष्ट्र की उन्नति के लिए हो, पुनः स्थापित करने की जरूरत है। आज जब समाज सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ड्रिवन यथार्थ से संचालित है, तब तिलक की यह सोच नैतिक विवेक और आत्मानुशासन की पुनर्स्थापना की मांग करती है। तिलक का राष्ट्रवाद केवल भारत केंद्रित भर ही नहीं था बल्कि वैश्विक मूल्यों से प्रेरित था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं परंतु आत्मगौरव की उपेक्षा कर विश्व सेवा नहीं हो सकती। यह विचार आज भारत की विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।
1: दोस्तों।

हमने जाना कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केवल स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भर सोच के समर्थक भी थे। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक मजबूत विचार और लगातार प्रयास से होती है। आज के युवा अगर ज्ञान, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो वे अपने जीवन के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज के समय में जब युवा विज्ञान और जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो अक्सर उनका ध्यान सिर्फ धरती पर चल रही प्रतियोगिताओं और चुनौतियों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी खगोलीय घटना की जो हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना व्यवस्थित और निश्चित नियमों के अनुसार चलता है। क्या आपने कभी रात के आसमान को ध्यान से देखा है? कभी कभी वही चांद जिसे हम हर दिन देखते हैं, अपनी कक्षा में स्थिति बदलने के कारण हमें कुछ अलग आकार का दिखाई देता है। ऐसी ही एक स्थिति है माइक्रोमून। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी यानी अपभू की स्थिति में होता है और उसी समय पूर्णिमा भी होती है, तब वह हमें सामान्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसी स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में माइक्रोमून कहा जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है, कई बार इसे ब्लू माइक्रोमून भी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लू मून और माइक्रोमून दो अलग अलग स्थितियां हैं। जहां तक ब्लू मून की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि चांद का रंग नीला हो जाता है। ये खगोलीय गणना से जुड़ी स्थिति है जब एक निश्चित समय में सामान्य से अधिक पूर्णिमा दिखाई देती है। दोस्तों, आसमान में होने वाली ये घटनाएं हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती हैं। बिना प्रमाण के किसी भी जानकारी को सही मान लेना वैज्ञानिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझना एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। चंद्रमा की दूरी हो या ग्रहों की गति, हर प्राकृतिक घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। बचपन में हमारे मन में आने वाला सवाल, जैसे चांद कभी बड़ा और कभी छोटा क्यों दिखाई देता है, तभी सार्थक होते हैं जब हम उनके जवाब वैज्ञानिक तरीकों से खोजने की आदत डालते हैं। इसलिए अगर अगली बार जब आप रात के इस आसमान में चांद को देखें, तो केवल उसकी सुंदरता को निहारे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को समझने की कोशिश भी करें। साथियों, कभी कभी प्रकृति हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाती है जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। रात के शांत आसमान में चमकता हुआ चांद, जिसमें कोई अपनी प्रिया का चेहरा देखता है, तो कोई ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को खोजता है। आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत, जिसमें चांद और प्रेम की खूबसूरती एक साथ झलकती है।

साथियों, गीत के बाद अब वक्त है कुछ खबरों का। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। भाला फेंक और यानी जुवेलिन थ्रो में प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर दूरी तय कर रजत पदक हासिल किया और वीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। दूसरी खबर है साथियों, सरकारी या निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 अगस्त है और काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन का दस्तावेज ले जाना जरूरी है। अगर आपने SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट में आपका नाम कट गया है तो उसको दोबारा जुड़वाने के लिए आपके पास मौका है। इसका आवेदन के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही वोटर हेल्प लाइन ऐप या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब साथियों, वक्त है आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो हमने पूछा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का फेमस स्लोगन क्या था, तो उनका फेमस स्लोगन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों, आज हमने जाना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देशवासियों में जागरूकता की भावना जगाई। हमने जाना अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही हमने समझा ब्लू माइक्रोमून जैसी खगोलीय घटना को, जो हमें हमारे विशाल ब्रह्मांड और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से परिचित कराती है। तीनों विषय हमें एक ही संदेश देते हैं, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ज्ञान, बदलाव को स्वीकार करने की सोच और नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा। और दोस्तों, जब हमारे अंदर कुछ नया सीखने की चाह, अपने सपनों को पूरा करने का जुनून और आगे बढ़ने का विश्वास होता है, तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। इसी उम्मीद, मेहनत और सपनों की उड़ान को महसूस करते हुए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

साथियों, इस खूबसूरत गीत के बाद अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपसे नए विषयों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

किसान भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? वैसे उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, जैसे कि आपका ये साथी देवेंद्र ले रहा है। साथियों, जब क्या कहते हैं कि आनंद की बात आती है तो मन ये करता है कि दिल में तमाम तरह के विचार आते हैं, खुशियों, अच्छी अच्छी बातें जहन में आने लगती हैं। पर हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है, और वो सपना होता है अपने पैरों पर खड़ा होने का, अपने हुनर को एक नई पहचान देने का और अपने घर परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने का। पर जब हमें अपनी मेहनत के साथ साथ सही मार्गदर्शन और सहयोग भी मिल जाता है तो हमारे जो सपने होते हैं, हम जो सपने को देखते हैं, वे हकीकत में बदलने लगते हैं। और आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो स्वरोजगार और हमारे आत्मनिर्भरता वाले सपनों को एक नई उड़ान देने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जिला ग्राम उद्योग रोजगार योजना के विषय में। और आपको बता दें कि हमारे जैसे लाखों लोगों के जीवन में

अनेकों सपने होते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जो मुख्यमंत्री जिला ग्राम उद्योग रोजगार योजना है। तो रोजना इस योजना का लाभ जो है, या कहें कि इस योजना के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोस्तों, योजना कोई भी काम हो उससे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस योजना के क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे हम इसके लिए आवेदन करें, और कैसे उन सवालों को जानें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पर जानते हैं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले एक क्या कहते हैं कि लोकगीत, या कहें कि एक अच्छा सा वो होता है ना, शुभ मुहूर्त कहते हैं कि जैसे शुभ काम किया जाता है, भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए या गाना गा लिया जाए। लेकिन हम आपको उसके विषय में थोड़ा गाना बाद में सुनाएंगे, लेकिन हम आपको इस समय रेडियो के माध्यम से या आपके ज़रिए आपको एक प्यारा सा लोकगीत सुनवा देते हैं। उससे पहले तो आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे।

0: तो साथियों, इस भक्ति में लोकगीत के बाद अब काम की बात फिर से शुरू करते हैं। तो हमने आपसे कहा था ना कि हम हमारे जो सरकार ने युवा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना चलाई है, तो उसके विषय में और अधिक जानने के लिए कि कैसे हम आप इसका लाभ उठाएं, कैसे आवेदन करें, इस तरह के तमाम सवालों को जानने के लिए हम पहुंचे एक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में। साथियों नमस्कार, आज हम एक और योजना के विषय में जानने के लिए आए हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। तो ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत किन किन लाभार्थियों को शामिल किया जाता है, कैसे इस योजना के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है, या इस योजना से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें समझने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला ग्राम उद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस योजना में युवाओं के लिए क्या क्या जानकारियां हैं या युवाओं के लिए ये कितनी उपयोगी है और इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सर इसके विषय में थोड़ा बताइए। पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत सर। तो शुरुआत में हमारा यही सवाल है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत किन किन युवाओं को शामिल किया जाता है।
1: धन्यवाद। ये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें विभाग द्वारा जो 10 लाख रुपए तक का जो फाइनेंस होता है बेरोजगारों को, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी ब्याज उपादान योजना इसका नाम है, जो इसमें ब्याज मिलता है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है 5 वर्ष तक।
0: अच्छा।
1: और सरकार की ये मंशा है कि बेरोजगार जो पढ़े लिखे लड़के हैं गाँव को पलायन न हो, उनको वहीं गाँव में रह के रोजगार अपना कर सके। छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे आटा चक्की उद्योग है, ग्रामीण तेल उद्योग है, लौह कला उद्योग है, मिनी राइस मिल है, बहुत उद्योग है।
0: लौह कला क्या होता है सर? ये
1: लौह कला में ये है लोहे के गेट, चैनल, दरवाजा।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है।
1: जाली, चैनल, गेट, ये सब है।
0: अच्छा सर, इसके अंतर्गत कितना लोन सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है?
1: 10 लाख तक। इसमें 5% उद्यमी स्वयं देगा, जो आरक्षित वर्ग का है, जैसे OBC है, SC है, अल्पसंख्यक है, महिला है, इनको 5% अपना लगाना है। शेष जो जैसे मान लीजिए 10 लाख का है तो 50,000 वो अपना स्वयं लगाएगा और 9,50,000 फाइनेंस होगा
0: सरकार द्वारा, बैंक द्वारा मान लीजिए। अच्छा तो सर उसमें ब्याज क्या लगता है, ये पूछना चाह रहे थे, ब्याज कितना?
1: ब्याज जो बैंक का होगा अधिकतम 14% तक पूरा ब्याज विभाग देगा।
0: अच्छा, मतलब जो लाभार्थी है उसे कुछ नहीं देना है?
1: उसे कुछ नहीं देना, जो मूलधन है वही देना,
0: वही देना। कितने वर्षों में सर इसकी अदायगी है, मतलब कितने साल?
1: 5 वर्षों में अदायगी है।
0: 5 वर्ष में उसे अदा करना है। अच्छा, इसकी जो किस्त बनेगी वो लाभार्थी की सहूलियत के हिसाब से बनाई जाएगी कि बैंक या सरकार के हिसाब से?
1: त्रैमासिक किस्त बन जाती है नियमतः।
0: अच्छा, त्रैमासिक मतलब तिमाही, मतलब साल में 4 बार?
1: 4 बार।
0: अच्छा, इसके लिए लाभार्थी को क्या क्या कागजातों की जरूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?
1: एक हमारा अनापत्ति प्रमाण पत्र है जो ग्राम प्रधान द्वारा लिया जाता है, जिसमें कोई प्रदूषण मुक्त हो, जो ग्राम सभा को कोई आपत्ति ना हो, उस बात का प्रमाण पत्र प्रधान देगा।
0: अच्छा, कि उनके कारखाने से गांव समाज को कोई आपत्ति नहीं है।
1: हाँ, प्रदूषण मुक्त उद्योग लगेगा।
0: जी जी जी जी।
1: और उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जात प्रमाण पत्र है
0: जी,
1: इतने ही कागज लगेंगे।
0: अच्छा, इसके लिए सर मतलब कहाँ हमें जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन कराना पड़ेगा कि आपके ग्राम उद्योग कार्यालय में आकर?
1: जनसेवा केंद्र में चले जाएंगे, MMGRY पोर्टल है
0: जी,
1: उसको आप जब लॉगिन करेंगे तो उसमें पड़ जाएगा, नहीं तो हम अपने विभाग से भी डलवा देते हैं।
0: अच्छा, इसका कोई शुल्क लगता है सर इसका आवेदन करने के लिए? जनसेवा केंद्र तो लेता ही होगा थोड़ा बहुत?
1: वो तो लेता है, विभाग में हमारे कोई शुल्क नहीं।
0: अच्छा, विभाग में आके कोई? अच्छा, इसके लिए कोई उम्र की तय सीमा कर रखी है कि न्यूनतम कितनी?
1: 18 से 45।
0: 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक उम्र है। तो सर आवेदन करने के बाद चयन कैसे होता है?

0: है उनसे ये
1: चयन एन कोई विशेष नहीं हो जाता है।
0: इंटरव्यू देना पड़ता है कुछ?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं।
0: शिक्षा का कोई?
1: कुछ नहीं, बस हाई स्कूल पास हो।
0: अच्छा, मतलब
1: उद्योग मेन चीज है, उद्योग लगाने के लिए उसको उद्योग की जानकारी होना चाहिए।
0: अच्छा सर, इसमें मतलब जैसे मान लीजिए कोई युवा है, कोई नया है, बिल्कुल फ्रेश है, उसे अनुभव नहीं है उन चीजों का, कारखाने लगाने का, तो फिर उसको मतलब कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आपके विभाग द्वारा की जा रही है?
1: हमारे यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो यहाँ मंडली प्रशिक्षण ग्रामोद्योग काल्पी में है हमारे यहाँ, तो वहाँ सारे उद्योगों के प्रवक्ता वगैरह है, तो वहाँ जानकारी देते हैं 3 दिवसीय।
0: अच्छा सर, हर मंडल में होते हैं?
1: प्रशिक्षण केंद्र हर मंडल में है।
0: हर मंडल में होते हैं, तो वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मतलब आपको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा?
1: जी जी।
0: अच्छा, उसके लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए भी आवेदन करना पड़ता है कि आपके कार्यालय द्वारा ही भेजा जाता है?
1: नहीं, जैसे हमारे यहाँ स्वीकृति हो गई फाइनेंस की, तो हम वो लिस्ट पूरी वहाँ भेज देते हैं, फिर वहाँ बुला लिया जाता है 3 दिन के लिए सारे उद्यमियों को।
0: तो वहाँ रहना खाना पीना उसमें कुछ?
1: खाना पीना सब फ्री।
0: अच्छा, सब फ्री रहता है। अच्छा सर, प्रशिक्षण दिया जाता है किन किन मतलब उद्योग लगाने के लिए?
1: कोई भी उद्योग।
0: अच्छा, इसमें महिलाओं को कोई विशेष तौर पे वरीयता दी जाती है क्या?
1: महिला किसी भी जात की हो, चाहे वो सामान्य की हो, उसको भी 0% महिला किसी भी जात की हो,
0: महिला को 0, मतलब कोई उनपे ब्याज नहीं लिया जाएगा उनके ऊपर?
1: जी।
0: अच्छा सर, लोगों को आपका विभाग कैसे जागरूक करता है, लोगों तक ऐसे कैसे सूचना पहुंचती है कि अब ये हमेशा ये योजना चलती है कि बीच बीच में बंद भी हो जाती है?
1: नहीं, हमेशा चलती है। हम लोगों के यहाँ शासन से 5 वर्ष के लिए योजना चलाई जाती है, 5 वर्ष बाद फिर उसका नवीनीकरण कर दिया जाता है, और हम लोग प्रतिवर्ष जो है 4 जागरूकता आयोजित करते हैं जनपद में।
0: अच्छा अच्छा, किस तरीके से की जाती है सर जागरूकता के लिए, क्या करते हैं आप लोग?
1: जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार होता है, वहाँ बेरोजगार युवक लोग आते हैं।
0: अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कितने लोग अभी इस मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग युवा रोजगार योजना इसमें कितने लोग लाभार्थी हुए हैं होंगे?
1: अभी इस वर्ष जो लक्ष्य आया तो हमने करीब 15 आवेदन पत्र भेज दिए अप्रैल से अब तक।
0: 15
1: अप्रैल से अब तक भेजे हैं, अभी आगे अप्रैल मार्च तक भेजते रहेंगे ना, आगे 30 मार्च।
0: मतलब ये हर महीना कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा चाहे तो आपके विभाग के जरिए ऋण ले सकता है?
1: जी।
0: तो उसके लिए कुछ बंधक, कोई चीज बंधक भी होती है कि उसकी कोई?
1: 5 लाख तक तो बिना बंधक के हो जाता है, 5 लाख से अधिक है तो बैंक फिर बंधक कराती है।
0: अच्छा अच्छा, सर बैंक का इशू नहीं आता? जैसे सबसे पहले जैसे आवेदन कर दिया, फिर आपके यहाँ पे उसको क्या इंटरव्यू देना पड़ेगा के लिए कुछ प्रावधान रहता है, क्या रहता है शुरुआत में जैसे, फिर उसके बाद बैंक का क्या सिस्टम रहता है, यही तो पूछना है सर मेन चीज।
1: आवेदन पत्र ऑनलाइन करके बैंक हम लोग भेज देते हैं।
0: बैंक में भेजते हैं आप?
1: हाँ हाँ।
0: फिर
1: बैंक हम लोग भेज देते हैं, और बस फिर आवेदन पत्र बैंक को भेज देते हैं, बैंक अपना सैंक्शन वितरण करता है।
0: अच्छा, बैंक फिर वो देखता है उसको कि ये व्यक्ति पात्र है या कुछ है, कैसा?
1: हाँ,
0: क्या
1: हाँ, पात्र है तो देता है।
0: अच्छा, आपका उसमें कुछ वो नहीं रहता फिर, आपके विभाग का कुछ
1: है? मॉनिटरिंग होती है जनपद स्तर पर डीएम महोदय के, हर महीने हमारी और डीएम की, बैंकर्स की, डीएलआरसी की बैठक होती है, उसमें समीक्षा होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सर, ये तो लोन की बात हो गई आपके विभाग की, और भी कोई योजना आपके विभाग द्वारा कोई चलाई जा रही है?
1: इसमें माटी कला ग्रामोद्योग रोजगार ना और चलाई जा रही वर्तमान में।
0: अच्छा, उसका क्या असर रहता है, उसमें क्या प्रावधान है, उसका लाभ कैसे ले लो?
1: इसमें हम लोग प्रजापति समाज को निशुल्क चाक देते हैं।
0: अच्छा, केवल मतलब प्रजापति समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को देते हैं? अच्छा, मतलब निशुल्क चाक मतलब इलेक्ट्रॉनिक चाक है कि सर वो पहले जैसे हाथ
1: वाला? इलेक्ट्रॉनिक।
0: तो उसके लिए भी कुछ पात्रता के लिए कुछ?
1: नहीं नहीं,
0: मतलब प्रजापति समाज का कोई भी व्यक्ति हो,
1: ये बस
0: वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके विभाग के जरिए उन्हें चाक मुहैया कराया जा रहा है।
1: हाँ हाँ।
0: तो 2 योजनाएं मतलब आपका विभाग चला रहा है
1: जी,
0: आपने जिनके बारे में बताया। और अच्छा सर, कुछ संदेश देना चाहें हमारे सुनने वालों को, अगर आप कुछ बताना चाहें उनके लिए कोई खास हो विशेष हो तो बताइए।
1: हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार इनकी स्कीमों से जुड़े और लाभ उठाएं, शासन द्वारा जिला जो चलाई जा रही योजना जो उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
0: हाँ, लाभान्वित हो, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।
1: जी जी
0: बिल्कुल। चलिए सर, आपने अपना समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ठीक सर, धन्यवाद।
2: साथियों, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी जी ने हमें बड़ी ही उपयोगी बातें बताई, जो उम्मीद है कि हम आप इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे और अपने सपनों को एक नई उड़ान देंगे।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, समय के साथ समाज बदलता है और जानते हैं हमारे समाज को नई दिशा देने वाली सबसे सशक्त शक्ति कौन होती है? तो वे होती हैं हमारे समाज की महिलाएं। जब एक महिला अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और संकल्प के बल पर आगे बढ़ती है तो न केवल अपनी पहचान बनाती है बल्कि अपने घर, परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। और ऐसी ही एक प्रेरक व्यक्तित्व के विषय में आज हम जानेंगे, जो महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण का प्रतीक हैं, दीप्ति शर्मा जी। तो आइए जानते हैं उनके विषय में अशोक कुमार सिंह से।
4: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अवधपुरी निवासी आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे अहम खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। दीप्ति की सफलता केवल एक खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं बल्कि एक परिवार के संघर्ष, भाई के समर्पण और एक बेटी के जुनून की ऐसी कहानी है जिसने आगरा का नाम विश्व क्रिकेट में चमका दिया। दीप्ति शर्मा के क्रिकेट कैरियर की नींव उनके भाई सुमित शर्मा ने रखी। जब लड़कियों के क्रिकेट को लेकर जागरूकता बेहद कम थी, तब सुमित ने बहन की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने बहन के करियर के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। दीप्ति को सुबह सुबह अभ्यास के लिए ले जाना, घंटों नेट्स पर मेहनत कराना और लड़कों के साथ साथ अभ्यास करवाना उनके शुरुआती संघर्ष का हिस्सा रहा। कई बार आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन परिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारी। पिता भगवान शर्मा ने बेटी के सपनों को हमेशा समर्थन दिया, जबकि माँ ने घर की जिम्मेदारियां संभालकर उसे खेल पर पूरा ध्यान देने का माहौल दिया। यही पारिवारिक सहयोग दीप्ति की सबसे बड़ी ताकत बना। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर आगरा की ही हेमलता काला का मार्गदर्शन भी दीप्ति के करियर के लिए अहम साबित हुआ। हेमलता काला ने दीप्ति के खेल को नई दिशा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके अनुभव और सलाह से दीप्ति ने बड़े मैचों को दबाव झेलना सीखा और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना भी उन्होंने सीखा। यही वजह है कि आज वे भारतीय टीम की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल हैं। दीप्ति शर्मा ने 2017 में महिला क्रिकेट में बड़ा इतिहास रचा। आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उन्होंने पूनम के साथ 320 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। इस मुकाबले में दीप्ति ने 188 रन की साझेदारी खेल कर विश्व क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस प्रदर्शन के बाद वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। बाएं हाथ की बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने भारतीय टीम को बेहतरीन संतुलन प्रदान किया। कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालना उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। T20 क्रिकेट में उनकी किफायती गेंदबाजी और दबाव में बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत है। महिला प्रीमियर लीग और विदेशी लीग में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपनी उपयोगिता साबित की। इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव भी इस विश्व कप में भारतीय टीम के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। दीप्ति शर्मा की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान भारतीय खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश में डिप्टी SP की जिम्मेदारी भी मिली है। खेल और सेवा दोनों क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। दीप्ति शर्मा भगवान हनुमान में गहरी आस्था रखती हैं। बड़े मुकाबलों से पहले पूजा अर्चना करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। परिवार के करीबी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: बताते हैं कि कठिन समय में उनकी आस्था ने उन्हें मानसिक मजबूती दी। इंग्लैंड में होने वाले महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में दीप्ति शर्मा की भूमिका बेहद अहम होगी। मध्य क्रम की बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी और दबाव में मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता भारत को सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है इस टूर्नामेंट में। दीप्ति शर्मा आज केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश भर की लाखों बेटियों के सपनों की पहचान बन चुकी हैं। छोटे शहर से निकलकर भारतीय महिला क्रिकेट की एम सदस्य बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल है। क्रिकेट के मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन में उन्होंने यह साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दीप्ति शर्मा की सफलता ने खास तौर पर छोटे शहरों और मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियों को बड़ा हौसला दिया है। आगरा जैसे शहर से निकलकर विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन दीप्ति ने हर चुनौती का सामना मजबूती से किया और वे आज इस मुकाम पर पहुंची। उनकी मेहनत का परिणाम यह रहा कि उन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा से चयनकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उनका शांत स्वभाव, मैच को समझने की क्षमता और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कला ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का महत्वपूर्ण स्तंभ तो बनाया ही है, साथ ही आगरा की बेटियों के लिए एक नई सपने दिखाने का काम भी किया है। दीप्ति शर्मा खेल जगत में उनका सफर उन परिवारों के लिए भी प्रेरणा है जो आज अपनी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने का सपना देख रही हैं। आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई युवा महिला खिलाड़ी दीप्ति को अपना आदर्श मानती हैं। क्रिकेट अकादमियों में अभ्यास करने वाली लड़कियों उनके संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हैं। खेल प्रशिक्षकों भी मानना है उनका भी मानना है कि दीप्ति जैसी खिलाड़ियों की सफलता से महिला खेलों को एक नई पहचान मिली है। दीप्ति हमेशा अपनी फिटनेस, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानती हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन में स्थिरता बनाए रखी।
1: महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं सशक्तता का प्रतीक दीप्ति शर्मा अभी इस विषय में प्रकाश डाल रहे थे। अशोक कुमार सिंह।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए साथियों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, और अगर बीते हुए 24 घंटों के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 34 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 24 घंटों के अनुमान में भी तापमान में धीरे धीरे से गिरावट देखी जाएगी। पर साथियों, तापमान भले ही कम हो जाए लेकिन ये उमस भरी गर्मी बड़ा ही बेचैन कर देती है, इसलिए खूब पानी पीते रहिए, तरल पदार्थों का सेवन करते रहिए, घर में जो दही मट्ठा लस्सी है, सत्तू हैं, उसका आनंद देते रहिए, और हमारे साथ भी आनंद लीजिए एक प्यारे से नोकझोंक वाले लोकगीत का।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपने अपने कामों से घर वापस लौट आए होंगे। दिन का ये बचा हुआ समय अपने परिवार वालों के साथ आराम से बिता रहे होंगे। साथियों, कितना अच्छा लगता है ना जब हम काम से घर लौटें और हमें हमारे परिवार वाले मिले, हम उनके साथ हंसी खुशी से समय बिताएं। लेकिन साथियों, ये जो खुशी है, ये जो आज़ादी आज हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए कई सालों तक कई हज़ार लोगों ने संघर्ष किए हैं और एक ऐसा ही संघर्ष आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1920 को पूरे देश में एक साथ शुरू हुआ और उस संघर्ष का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में शुरू किया गया। ये भारत का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ये भारतीय जनता के बीच पनप रही शिकायतों और निराशा की चरम सीमा के प्रति एक सशक्त और जोशीली प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन को शुरू करने के तत्कालिक कारण थे। कांग्रेस ने सितंबर 1920

में कलकत्ता के आयोजित अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी और इसके बाद यह आंदोलन देश भर के जनसमूहों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कई कारण थे, जैसे अंदरूनी असंतोष। ब्रिटिश औपनिवेशक शासकों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण ने पहले ही हमारी भारतीय जनता को गरीब बना दिया था। प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान और उसके बाद देश की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी, जो बढ़ती मुद्रास्फीति थी और भारी कालाधन था और नकदी फसलों की जबरन खेती, इन सब से हमारी भारतीय जनता को और भी बदतर हालत में पहुंचा दिया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश शासन ने हमारे राष्ट्रवादियों के लिए पहले समर्थन करने के बाद उनकी जो मांगे थी उसे मानने का जो वादा किया था वो अपने वादों से पीछे हट गई, जिससे वर्षों की जो आशावादिक राजनीतिक जो आशा रखी गई थी ब्रिटिश शासन से, वो आशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। और इसके पहले आया 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसके तहत भारतीयों को सिर्फ शक के बिना पर, बिना किसी मुकदमे और बिना किसी सबूत के गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता था। और इसका मुख्य कारण था कि बिना किसी उद्देश्य के जो हमारे राष्ट्रवादी हैं उनको आत्मरक्षा का अवसर ही ना दिया जाए और बिना किसी अवसर के उन्हें कैद कर लिया जाए। इससे राष्ट्रवादी और अन्य नेता बेहद नाराज हो गए थे। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया था। और इसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीयों की एक शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई और इसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए, और इस घटना ने पूरे भारतीय जनता को स्तब्ध और क्रोधित कर दिया था। लेकिन इतना जन आक्रोश होने के बाद भी गांधी जी ने आंदोलन करने के लिए एक बिल्कुल ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अहिंसा का साथ दिया और इस बात का निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक रखा जाएगा और भारतीय इसमें अपनी असहयोगिता यानी कि ब्रिटिश शासन को सहयोग न करने की शपथ लेंगे। बापू ने कहा, दुश्मन को हराने के लिए उनके जैसा बनना जरूरी नहीं है। गोली का जवाब हमेशा गोली नहीं होता, बल्कि हम उसे ना कहकर भी मना कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ साथियों, अपने विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता ने सभी अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। लाखों छात्र अपना बस्ता लेकर सड़कों पर आ गए। जगह जगह नेशनल स्कूल और विद्यापीठ खुलने लगे। जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, ये सब इसी आंदोलन की देन है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। क्लर्क, बापू, चपरासी सबने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि हम जुल्म करने वाली सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सरकारी वकीलों ने भी वकालत छोड़कर आंदोलन में भागीदारी की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े वकील, जिनकी फीस उस समय हजारों में थी, उन्होंने अपना काला कोट उतार दिया और आंदोलन में हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बाजारों में बोरी में भर भर के विदेशी कपड़े लाए गए और उसमें आग लगा दी गई। और उसी दिन से हर घर में चरखा चलने लगा, खादी बनी, स्वदेशी अपनाई गई। सोचिए साथियों, बिना एक पत्थर फेंके, बिना एक लाठी चलाए पूरे देश का काम ठप कर दिया गया। स्कूल बंद, अदालतें बंद, दफ्तर खाली। अंग्रेज हैरान रह गए। उनके पास लाठी थी, गोली थी, सेना थी, लेकिन सामने खड़े हुए लोगों के ना कहने का कोई जवाब उनके पास नहीं था। और यही थी असहयोग आंदोलन की असली ताकत। जब मजदूर काम पर ना जाए, जब किसान लगान देने से मना कर दे, जब छात्र स्कूल ना जाए, तो सबसे बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। साथियों, असहयोग आंदोलन देश भर में अपनी चरम गति पर था। हर गली हर कस्बे में लोग खादी पहन रहे थे, चरखा चला रहे थे, सरकारी कामों का बहिष्कार कर रहे थे और लग रहा था कि अब अंग्रेज ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसी समय एक दुखद घटना होती है।
उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में

प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना ने गांधी जी को पूरी तरीके से हिला दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक हो। और इसी बढ़ती हिंसा की वजह से 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश को एकजुट किया। उसे हिंसक घटनाओं के कारण वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी पहली बार पूरे विश्व ने अहिंसा की ताकत को देखा और जाना था। और साथियों, आज का हमारा सवाल भी जुड़ा है गांधी जी से ही। गांधी जी का भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? साथियों, आप ढूंढिए अपना जवाब। तब तक हम भी देशभक्ति के रंग में रंगते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: सोच ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, इंसान का गुण ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। रुपया, पैसा, रंग रूप तो फिर भी समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन इंसान के अच्छे गुण ही हैं जो सदैव उसके साथ रहते हैं। और ये बात हमें तब भी ध्यान रखनी चाहिए जब बात अपने लिए जीवन साथी चुनने की आए, क्योंकि कई बार समाज लड़कियों से ऊपर उसके परिवार से मिलने वाले दहेज को रखता है। साथियों, दहेज तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा, जो काम आएगा वो है गुड़। और इसी विषय को अधिक जानने के लिए आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है दहेज नहीं गुण देखिए, और वार्ताकार है श्रीमती नीरज कुशवाहा।
2: किसी भी प्रथा या परंपरा के मूल में कोई ना कोई महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक कारण रहा करता है, क्योंकि विश्व में अकारण ना कुछ है और ना कुछ हुआ ही करता है। दहेज लेन देन की प्रथा न्यूनाधिक रूप में सभी देशों, जातियों, धर्मों और वर्गों में विद्यमान रही है और आज भी है। वर्तमान में दहेज प्रथा गले में अटकी हड्डी और गलघोटू फंदा बन चुकी है। यह कुप्रथा आज जिस प्रकार का नग्न तांडव हमारे आसपास कर रही है, उसका स्वरूप और वर्णन ब्यौरा बड़ा ही करुण, हृदय विदारक और लोम हर्षक है। इसने ऐसे उग्रवाद का रूप अख्तियार कर लिया है कि इसके चलते बेचारी वधुओं को अस्तित्व का महत्व ही समाप्त हो गया है। उन्हें एक घटिया प्रकार का पर लाभदायक जींस मान लिया गया है। तभी तो जब वह प्रत्यक्ष लाभ नहीं पहुंचाती, तब उसे जलाकर, गला घोटकर, विष देकर, बिजली के करंट लगाकर या अन्य किसी भी उपाय से समाप्त कर दिया जाता है। दहेज प्रथा के विषय में अमर साहित्यकार प्रेमचंद लिखते हैं, दहेज बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। बस चले तो दहेज लेने वालों और देने वालों दोनों को ही गोली मार देनी चाहिए, फिर जाए फांसी ही क्यों ना हो। पूछो आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं। आज हमने उनकी, उनके विश्वास की और उनके साहित्य की हत्या कर डाली। समाज के जिन कर्णधारों से प्रेमचंद यह आशा करते थे कि उनकी दहेज विरोधी यथार्थ दृष्टि के सम्मान में वे दहेज का उन्मूलन कर डालेंगे और दहेज को नहीं गुण को महत्ता देंगे, वे ही प्रथम पंक्ति के सामाजिक गण, यूं कहिए कि आज के गणमान्य नागरिक ही दहेज लेन देन के सफल व्यापारी बने हुए हैं। आज हम प्रेमचंद की आवाज का गला घोटने में कितने सफल हैं, कितने अकृतज्ञ हैं कि हम उनके प्रति यदि आत्मविश्लेषण करें तो शायद मुंह छिपाने को भी जगह न मिले। दहेज का दानव आज भारतीय समाज में विनाश लीला मचाए हुए है। दहेज के कारण आज नारियों के गुणों की

कोई महत्ता नहीं रह गई है। आज गुड़ से ज़्यादा दहेज के दानव दहेज को महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ आज शिक्षा का प्रसार एवं जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ दहेज की समस्या घटने के बजाय बढ़ी है, यदि लड़का डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर प्रशासनिक अधिकारी या कुशल व्यापारी एवं संपन्न परिवार से संबंधित है तो दहेज के बाजार में उसकी ऊंची बोली लगती है। दूसरी ओर कितनी भी सुंदर सुशील एवं शिक्षित कन्या हो, दहेज के अभाव में उपयुक्त वर नहीं मिल पाता। आज के समाज में कन्या के गुण से अधिक उसके विवाह में मिलने वाले दहेज पर अधिक महत्व दिया जाता है। आज नारियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत बन रही हैं। आज लड़कियां भी लड़कों के बराबर नौकरियों में आ रही हैं। लड़कों की तरह लड़कियां भी इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर प्रशासनिक अधिकारी बन रही हैं, किंतु उनके गुण की कोई महत्ता नहीं है। उनकी शादी के समय उचित दहेज के अभाव में अच्छे वर नहीं मिलते हैं। अगर लड़का इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसके घर वाले उसकी पढ़ाई लिखाई सभी का खर्चा जोड़कर दहेज की लिस्ट बनाते हैं। क्या केवल लड़के की पढ़ाई में ही पैसा खर्च होता है, जिस लड़की के माँ बाप ने उसे उच्च शिक्षा दिलाई है, उसे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाया है, उस लड़की की पढ़ाई में क्या पैसा खर्च नहीं हुआ है? आज हम लड़की के अंदर जो गुण हैं उनको नहीं देखते हैं, जबकि हमें दहेज से ज़्यादा गुण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुणवान स्त्री ही घर की नींव रखती है और उस घर में उनके बच्चों में संस्कार डालती है। अगर लड़की घर परिवार के साथ मिलकर चलती है तो घर में शांति रहेगी, अगर लड़की गुणी नहीं है तो घर में अशांति रहेगी और घर के किसी भी सदस्य के साथ सामंजस्य नहीं बना पाएगी। आज इस दहेज रूपी दानव ने आकर लड़कियों की गुणों की महत्ता को समाप्त सा कर दिया है। अब तो शादी में मिलने वाले दहेज पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसी से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। अब तो विवाह संबंध तय करते समय काफ़ी सौदेबाजी की जाती है। यह कहा जाए कि दहेज के रूप में लड़की के माता पिता का शोषण किया जाता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आज दहेज रूपी कोड के कीटाणु समाज में व्यापक रूप से फैल चुके हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उनके लिए लड़कियों का विवाह एक गंभीर समस्या बन गया है। दहेज का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। उस समय दहेज कन्या के प्रति स्नेह के कारण स्वेच्छा से दिया जाता था। उस समय कन्या के गुण पर अधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं की जाती थी। जो भी वस्तु दी जाती थी वह स्वेच्छा से दी जाती थी। दहेज का प्रचलन राजपूत काल में 13वीं एवं 14वीं सदी में प्रारंभ हुआ और कुलीन परिवारों ने अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार दहेज की मांग प्रारंभ कर दी। बाद में अन्य लोगों में इसका प्रचलन हो गया। आज शिक्षा एवं सामाजिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ दहेज घटने की बजाय बड़ा ही है। वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। दहेज के विकृत रूप को समाप्त करने के लिए 1 जुलाई 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बना, किंतु इस अधिनियम में कई कमियां थीं जो बाद में दूर कर दी गईं। इस अधिनियम को और कठोर बनाने, दहेज के लेन व देने को ज्ञातव्य अपराध घोषित करने तथा दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष का कारावास और ₹15,000 जुर्माने का दंड देने का प्रावधान है।

0: ऐसे अपराध की जमानत भी नहीं होगी। यहाँ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कानून बनाने मात्र से किसी भी सामाजिक समस्या का हल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके पीछे प्रबल जनमत न हो। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक होकर आगे आना होगा। युवतियां आजीवन कुंवारी रहने की कीमत पर भी उस घर में विवाह से इनकार कर सकती हैं जहां एक पैसा भी दहेज की मांग की जा रही हो। इस प्रकार नवयुवक अपने माँ बाप से स्पष्ट कह सकते हैं कि वे कुंवारे रहना पसंद करेंगे पर दहेज लेकर विवाह नहीं करेंगे। हमारे विचार में नवयुवकों का उत्तरदायित्व अधिक है, वहीं दृढ़ निश्चयी होकर इस कोड़ को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। कहा जाता है, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नारियों का जीवन सुखी व्यतीत हो सकता है, पर दहेज की बलवेदी पर पतियों से कहीं अधिक कमाने वाली पत्नियों का भी बलिदान होते देखा जा सकता है। अंतरजातीय विवाह करने वाली और प्रेम विवाह करने वाली नारियों को भी घुटने रगड़ते मरते खपते देखा जा सकता है। इस दृष्टि से वास्तविक आवश्यकता ऐसी मानसिकता के विकास की है जो वास्तव में दहेज को कोड़ मानकर नारी को वास्तविक सम्मान दे सकें, उसे आय का साधन नहीं सहधर्मिणी समझें। कानून बनाकर इस प्रथा को रोक पाना संभव नहीं, स्पष्ट हो चुका है। सारे कानून धरे रह जाते हैं और दहेज हत्याएं करने वाले पहले से भी उग्र रूप में दंदनाते रह समाज की छाती पर मूंग दलते हुए देखे जा सकते हैं। आवश्यकता नवयुवकों को जागरूक मानसिकता लेकर सामने आने देने की है, वहीं अपने आचार व्यवहार से दहेज के भूत को मार भगाने और कोड़ को मिटा सकते हैं। यदि यथासंभव ऐसा करना संभव न हो सका तो वह दिन दूर नहीं जब विवाह नामक संस्था व्यर्थ होकर टूट और बिखर कर रह जाएगी। उसे बचाने के लिए दहेज के जिन्न को बोतल में बंद करना तत्काल जरूरी है, जिससे कि कन्याओं के विवाह में दहेज नहीं गुड़ देख सकें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था दहेज नहीं गुड़ देखिए, और वार्ताकार थी श्रीमती नीरज कुशवाहा।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
4: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
3: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अब वक्त है आज पूछे गए सवाल के जवाब का, और आज का सवाल था कि गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कौन सा किया था, और इसका जवाब है उनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था, क्योंकि वहां पर किसानों पर नील की खेती के लिए अत्याचार किए जा रहे थे, उन्हें जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, तो गांधी जी का पहला आंदोलन वहीं शुरू हुआ था। साथियों, आज है 1 अगस्त, और आज से लेके 7 अगस्त तक पूरे हफ्ते मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह। माँ का दूध एक ऐसा अमृत जो बच्चे के जीवन में ताकत और जीवन से कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति खोल देता है। कितना प्यारा नियम है ना प्रकृति का, कि माँ अपने शरीर में एक ऐसा अमृत बनाती है अपने बच्चे के लिए जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा पौष्टिक होता है। साथियों, यूँ तो हम सबको माँ के दूध के महत्व के बारे में पता है, फिर भी हम इस सप्ताह को मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि लोग स्तनपान को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।

करते हैं। जैसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, उसके एक घंटे के अंदर अंदर उसे माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। वो दूध बच्चे के लिए अमृत समान है, क्योंकि वो कोई आम दूध नहीं है, बल्कि उस दूध में अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। इसे बच्चे का पहला टीका भी कहा जाता है। और इस दूध के अलावा बच्चे को कुछ और चीज़ें जैसे घुट्टी या शहद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। साथियों, माँ के दूध में हर वो पोषण तत्व है जो बच्चे के शरीर को बढ़ाने और विकसित करने में पूरी तरीके से मदद करता है। उसकी हड्डियाँ मजबूत करता है, दिमाग तेज करता है, पेट ठीक रखता है, और लाखों दवाइयों से भी जो ताकत नहीं मिल सकती वो ताकत उसे देता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि गर्मी का मौसम है, जैसे हमें प्यास लग रही है, हो सकता है बच्चे को भी प्यास लग रही हो। बिल्कुल नहीं साथियों, क्योंकि बच्चे के लिए जो माँ का दूध है ना, वही उसके पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मी हो या सर्दी, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दो बातें बिल्कुल ध्यान रखिए कि जन्म के एक घंटे में माँ का पहला गाढ़ा दूध उसे ज़रूर पिलाएं, और 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दें। साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो साथी शालिनी भदौरिया को इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस

0: स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक इन मैसूरु दिस इवनिंग। द मेमोरियल कमेमोरेट स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक विजिट टू मैसूरु इन 1892 व्हेन ही मेट दीवान ऑफ मैसूर सर के शेषाद्री अय्यर एंड रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम मैसूर महाराजा श्री चाम राजेंद्र वडियार फॉर हिज जर्नी टू द यूएस टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो। Addressing the gathering on this occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekananda truly embodied the spirit of India. He highlighted that country's youth are driving global growth.
0: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said that the projects launched today, spanning roads and energy security, reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Thimsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2000

0: 1,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund or SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the seven affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received the first installment of SDRF for the financial year 2026-27. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for 10th of August. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kg cylinder today. The new price of a commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees, while in Kolkata, it will now be 2,872 rupees and 50 paise. In Mumbai, it will be 2,691 rupees and 50 paise, and in Chennai, 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. The decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award instituted by Lokmanya Tilak Smarak Trust was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Indian Army paid its final tribute to General Vishwanath Sharma, retired, a former chief of the Army staff. General Sharma's last rites were conducted with full military honours today in New Delhi. He passed away yesterday morning in New Delhi at the age of 97. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, India, Soman Rana won the gold medal in men's shot put F57 para-athletics with a best throw of 13.4 metre. India registered a double podium finish in the event as Shubham Juyal claimed silver, finishing just behind compatriot Soman Rana. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंकज गुप्ता की वार्ता। विषय है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, व्यक्तित्व और कृतित्व।
2: स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह वह उद्घोष है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नए आयाम दिए। इस मार्गदर्शक उद्घोष के उद्घोषक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य का जन्म एक नौकरी पेशा वाले घर में 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता गंगाधर पंत एक अध्यापक थे और इनकी माता पार्वती बाई धार्मिक विचारों की महिला थीं। लोकमान्य के बचपन का नाम बलवंत राव था। वे बचपन से ही कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के मालिक थे। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत 1868 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण हो गया और जब उनकी आयु 17 वर्ष की थी तब उनके पिता ने संन्यास ले लिया। इस समय तक तिलक केवल प्रारंभिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाए थे। अब उनको आगे की पढ़ाई जारी रखना तो दूर, पेट भरना भी दूभर हो गया था। इसलिए तिलक को 5 रुपये मासिक वेतन पर मराठी स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। इन कठिन परिस्थितियों ने तिलक को मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायता तो दी ही, परंतु भविष्य में देश के निर्माण के लिए यह एक वरदान सिद्ध हुआ। तिलक में अपनी बात पर हट करने का स्वभाव बचपन से ही था। कठोर से कठोर दंड का डर भी उन्हें डिगा नहीं पाता था। एक बार कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने मूंगफली के छिलके फर्श पर फेंक दिए। इस पर अध्यापक नाराज हुए और उन्होंने पूछा कि किसने छिलके फेंके हैं, पर किसी ने नहीं बताया तो शिक्षक ने सभी छात्रों से खड़ा होने को कहा और सभी को दो दो बैंत मारे, पर तिलक ने अपने हाथ आगे नहीं किए और कहा कि मैंने छिलके फेंके ही नहीं हैं तो मैं सजा किस बात की सहूं। न्याय के लिए कष्ट सहने का उनका यह स्वभाव

0: भविष्य में उनके लिए काफी काम आया और देश के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। इनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही अजीबोगरीब रहा। ये कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के तो थे, परंतु अध्यापकों को पूर्ण इज्जत नहीं देते थे। इसका अर्थ यह नहीं था कि लिखने पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी, उनकी लिखने पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। एक अध्यापक द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में उनकी कविता मातृविलाप सर्वश्रेष्ठ मानी गई। बीए परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तिलक ने 1879 में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद पूना जाकर एक शिक्षा प्रचारक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। आगे चलकर वे इसी नगर में राजनेता के रूप में विकसित हुए। तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल खोला, जो शीघ्र ही काफी प्रसिद्ध हुआ और इसके विद्यार्थियों की संख्या 1200 तक पहुंच गई। अध्यापन कार्य के साथ साथ तिलक ने संपादकीय कार्य भी किया और मराठा और केसरी नामक दो अखबार चलाए। इन अखबारों द्वारा उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और जनसाधारण को जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। वर्ष 1889 में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होकर राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश किया। वर्ष 1890 के अधिवेशन के लिए ये पूना से कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन लिए गए। यह एक चिर स्मरणीय अधिवेशन था, जिसमें गोखले, लाला लाजपत राय और वीसी पाल एक ही मंच पर मौजूद थे। इसी अधिवेशन में तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना गया। तिलक को कांग्रेस के नरम दल की नीतियां रास नहीं आईं। वे शुरू से ही अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते रहे। उन्होंने वर्ष 1891 के नागपुर अधिवेशन में अंग्रेजों की सैनिक नीतियों का विरोध किया। वर्ष 1895 के पूना अधिवेशन में बढ़ी मालगुजारी का विरोध किया। इस वर्ष बंबई प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा था। तिलक ने लोगों को इस अवसर पर खूब जागृत किया और अंग्रेजी शासन की भूमिका की आलोचना की। तिलक ने हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना जागृत करने के लिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किए। गणेश महोत्सव तो आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर दो युवकों ने शिवाजी उत्सव के दौरान रैंड और आयर्स नामक दो युवकों की गोली से हत्या कर दी। तिलक को इस अपराध में भागीदार माना गया और उन पर मुकदमा चला। न्यायमूर्ति तैयब जी ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया, परंतु उन्हें 18 माह की सजा सुनाई गई। जेल में तिलक बीमार हो गए, उन्हें यरवदा जेल पहुंचाया गया। उनकी रिहाई पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तिलक ने 1898 में ही आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने आर्यों की उत्पत्ति आर्कटिक क्षेत्र से बताई है। तिलक ने अपने लेखों द्वारा लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 में भाग लें। इस समय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल आपस में टकराने लगे थे। दोनों के मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए और कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल की समस्त नीतियों को तिलक के नेतृत्व में घोषित किया गया। धूलिया सम्मेलन के बाद उन्होंने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी वर्ष तिलक ने नशाबंदी आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के समर्थकों को 1908 में बंदी बनाया जाने लगा। तिलक भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हीं की प्रेरणा पर श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने कार्यों को अंजाम दिया। उनके लेखों ने लोगों के हृदय में ज्वाला भड़का दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नया रुख धारण कर लिया। 13 जुलाई 1908 से तिलक पर मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। इस मुकदमे के दौरान तिलक ने 21 घंटे का ऐतिहासिक भाषण दिया, परंतु तिलक को 6 वर्ष के काले पानी की सजा हुई, जिसका देशव्यापी विरोध हुआ। जेल में तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। इसके बाद लोकमान्य तिलक इंग्लैंड चले गए। जब लोकमान्य इंग्लैंड में स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, ब्रिटिश सरकार भारत में दमन चक्र चला रही थी। 1919 में जलियांवाला बाग कांड को सुनकर वे भारत वापस आ गए। यद्यपि इन्होंने सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, परंतु फिर भी वे स्वतंत्रता आंदोलन को अपने ढंग से सहयोग देते रहे। वर्ष 1920 में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 31 जुलाई को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह महापुरुष मर तो गया, परंतु अपने कार्यों के कारण मर कर भी अमर हो गया।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, व्यक्तित्व और कृतित्व। वार्ता

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देशभर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।

0: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्त के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
4: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
1: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है, वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने

0: 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
1: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
2: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है, जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी भारती शर्मा। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और मानवीय मूल्यों की एक ऐसी जीवंत धारा है जो समय के साथ और अधिक समृद्ध होती गई है। यही कारण है कि हमारे देश को विश्व की सबसे प्राचीन और सतत जीवित सभ्यताओं में गिना जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हमारे भारत की संस्कृति, एक अमूल्य धरोहर विषय पर। संस्कृति केवल हमारी वेशभूषा, भाषा या खानपान तक सीमित नहीं होती बल्कि हमारे विचार, व्यवहार, संस्कार, कला, संगीत, साहित्य, परिवार व्यवस्था और जीवन जीने की शैली भी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय

संस्कृति का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। यही विचार हमारे देश भारत को पूरी दुनिया से अलग पहचान देता है। आइए इसी भावना के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अलग अलग प्रदेशों की अपनी वेशभूषा, भोजन, लोकगीत और लोक नृत्य हैं। कहीं बिहू की मधुर लय है तो कहीं गरबा की रंगत, कहीं कथा की मनोहारी प्रस्तुति तो कहीं भरतनाट्यम की गरिमा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप असम तक भारत अनेक रंगों से सजा हुआ है। फिर भी जब बात देश की आती है तो हर भारतीय की पहचान केवल एक होती है, वो है हम भारतीय हैं। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निराह है और मृतक समान है। श्रोताओ, ये पंक्तियां हमें अपने देश और संस्कृति के प्रति गर्व करना सिखाती हैं। हमारी संस्कृति हमें प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान का संदेश देती हैं। यही कारण है कि भारत में अनेक धर्मों और समुदायों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं।

श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि संस्कार भी हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, अतिथि का आदर करना, सत्य और ईमानदारी का पालन करना। हमारी संस्कृति कहती है, माता, पिता, गुरु और अतिथि सभी सम्मान के पात्र हैं। आज जब दुनिया आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब भी हमारे परिवारों में संस्कारों की परंपरा जीवित है। संयुक्त परिवार की भावना, त्योहारों पर एक साथ मिलना और सुख दुख में साथ खड़ा होना हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। दीपावली हो या ईद, गुरु पर्व हो या क्रिसमस, पोंगल हो या बैसाखी, हर पर्व हमें जोड़ने का संदेश देता है। इसी भावना को व्यक्त करता है कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, हमारे देश की संस्कृति की धरोहर केवल हमारे त्योहारों तक सीमित नहीं है। हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, खगोल विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म, ये सब भारत की अमूल्य देन है। आज 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। यही कारण है कि भारत को विश्व गुरु कहा गया। कबीर दास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमारी वाणी ऐसी हो जो दूसरों को सुख पहुंचाए और स्वयं को भी शांति दे। इन्हीं जीवन मूल्यों ने भारतीय संस्कृति को युगों युगों तक जीवंत रखा है।

श्रोताओं, हमारी संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं उतनी ही सशक्त भी हैं। हमारी परंपराएं हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ती बल्कि वर्तमान को दिशा और भविष्य को आधार भी देती हैं। श्रोताओं, अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 8 बजने को है। हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में।

में संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा

जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए

स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है।

0: जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is
2: श्रोताओं, अभी हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है भजन संध्या। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गोपी फिल्म का भजन, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में नील कमल फिल्म का भजन। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रवि ने।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जूली फिल्म से। इसे गाया था आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने। संगीत था राजेश रोशन का। इसके साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रेम गीत फिल्म का गीत। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने। इंदिवर के गीत को संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में प्यार दीवाना होता है फिल्म का युगल गीत। इस गीत को लिखा है मदन पाल और रविंद्र रावल ने, धुन बनाई है बाबुल बोस ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए

0: भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान

0: विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को

0: राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmin Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects

0: earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सेहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तई पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जना मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड एसडीआरएफ के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासरा 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स एनडीआरएफ की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुजश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से ही मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामानिगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नजर बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में कोविड-19 वबा के सबब मुअत्तिल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2,00,000 रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट, महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी शराकत दारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम, उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 के बंद होने के पेश नजर रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहरा बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद यह फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं, जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के लिए जारी किए गए अलहदा अलहदा दादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपये मौसूल हुए हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये मौसूल हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये मिले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मस्कूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके, जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वॉल को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F-57 मुकाबले में

सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांति

शिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है। सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है।

गई है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है उस लेखन का तरीका अलग है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई और उसके आंदोलन के

जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत

0: साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे स्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, है भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की ही स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गईं। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम

0: ही लगी है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ। सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है। अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
2: हमारे राष्ट्रकवि मैत्रीक्षण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
3: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
0: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
4: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का, रचनाकार नवाब राय। यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और

0: इस प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। With their mellifluous voices, spirited singing, and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T. N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan, and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru's style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindra on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: The concert for tonight begins with the composition of Harikeshanallur Muthaiya Bhagavathar in Raga Nattai set to Rupaka Talam Shakti Ganapatim.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं माम व मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद माम व मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट्टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: In tonight's national program of music, we are listening to a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They are accompanied by Srimati Shraddha Ravindra on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट्टूर आदितालम।

0: अभी आपने सुना तन्यावर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनी आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंह।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Bajji Maname, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक

0: इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंति चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Center, Vivek.